0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी, तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।

चलो गुड मॉर्निंग तो आपकी हो गई है, लेकिन कोई कहानी के साथ दिन की शुरुआत करें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, नमस्ते सत श्री अकाल वणकम अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और सोचा कि सुबह सुबह के एक अच्छी पॉजिटिव कहानी के साथ में क्यों ना शुरू करें हमारा दिन। एंड इट्स नॉट प्रीची और ज्ञान देने का कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, बस कहीं ना कहीं मम्मी की कुछ बातें होती है ना मुझे याद आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर मम्मी जो होती है ना कुछ सीख ना अपने तरीके से बहुत अच्छे से बताती है। जैसे बचपन में मैं जब छोटी थी एंड आई यूज़ टू I was playing with a doll or some एक toy था जिसमें batteries की ज़रूरत थी, और जहाँ पर me the curious little Afreen a 6 year old battery को positive और negative size समझने की कोशिश कर रही थी, and I was trying to put that battery in a toy। तो बस मम्मी ने तभी एक बहुत ही अच्छी सीख मुझे समझाई थी, और मुझे वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रही है, जो कुछ इस तरह से है कि बैटरी में अक्सर आप देखते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं। और ऐसे ही शी एक्सप्लेन इट टू मी कि यार इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है आफरीन, कि हर कोई चीज़ चलाने के लिए आपको वो बैटरी में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, नेगेटिव्स एज वेल पॉजिटिव्स एज वेल। वैसे ही इंसानों में भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। अब ये अपने ऊपर है आफरीन कि किस तरह से तुम्हें वो इंसान को देखना है। कभी कभार होता है कि किसी इंसान के सिर्फ नेगेटिव साइंस हमारे सामने दिख कर आते हैं, उभर कर आते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से गलत है, नहीं, हर एक इंसान में पॉजिटिव साइड भी होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ की पॉजिटिविटी इज़ ऑल अबाउट। कि भाई लोगों को नज़रिए से जब देखते हैं एक अच्छे नज़रिए से, तब हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है और ज़िंदगी इस तरह से आसान लगने लगती है। बस मम्मी की ये छोटी सी बात सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर कि ये बात आपको भी कहीं ना कहीं याद ज़रूर आएगी। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से, अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके?
2: जाना जरूरी है।
3: कहाँ जा रहे हो?
2: नहीं दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है आपसे।
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके ओके,
3: आई लव यू,
2: आई लव यू टू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
2: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
1: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये 90s नॉस्टैल्जिक गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. आई एम श्योर ये सुनकर आपको बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग जरूर आ गई होगी. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज सिंपली आफरीन विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, जो समा चल रहा है, कल मुझे ऐसा लगा था कि हाँ अब से सुहेल स्टार, क्योंकि वो दिख गया है, सो नेक्स्ट 52 डेज जो है वो गर्मी थोड़ी सी कम होगी. लेकिन कल जो शाम को चरम पर थी, ओ माई गॉड, मतलब इतने दिनों में शाम के वक्त इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी महसूस नहीं हुई थी जितनी कल महसूस हुई है. और बस इसी के साथ एक उम्मीद की लहर भी यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगी.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. वेल, वेदर अपडेट में कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि आज और कल यानी 26th and 27th of August चांसेस है कि कहीं पर लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हो और कोई एरियाज में बारिश हो. अब हमेशा ऐसा होता है ना कि ये जो एरियाज होते हैं ना, हमारे एरिया नहीं होते, ये दोहा वक्रा वाले एरिया होते ही नहीं है, ये बहुत दूर बॉर्डर के साइड वाले एरिया होते हैं. एंड जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड के होपिंग ये हमारे वाले एरिया हो एंड अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपको बारिश की बरसात महसूस हो. सो वेल, इंजॉय करने मिले विद दिस. आज का वेदर एग्जैक्टली क्या कहता है, 43 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर कह रहा है, 33 डिग्री मिनिमम कह रहा है, ह्यूमिडिटी ओफो कल से भी ज़्यादा है, 77% पर है और हल्की हल्की हवाएं चल रही है 13 किलोमीटर पर आवर पर. ऑल इन ऑल वेदर वही है जो उम्मीद किया था. लेकिन हमें ये अच्छे वाले गाने सुनते सुनते खुश होते जाना है. राशिद अली की आवाज में जाने तो या जाने ना से ये गाना ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

वेल सिल्क रूट बैंड यानी मोहित चौहान की आवाज में ये गाना जब 90s में आया था, इट वाज वन ऑफ द यूनिक सॉन्ग्स आई वुड से. मतलब इतने अच्छे से मुझे इसका म्यूजिक वीडियो याद है, एंड आई एम श्योर आपको भी याद होगा कि आप उस समय में यंग रहे होगे, छोटे रहे होगे, और ये भी सोच रहे होगे कि ये वीडियो बनाया कैसे यार. पानी के अंदर बाकायदा पूरा बैंड पानी के अंदर अंडर वाटर था और इसकी शूटिंग की गई थी, और ऐसे ही क्वाइट लिटरली ये शूट हुआ था. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस वीडियो शूटिंग की, कभी आराम से सुनाऊंगी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्टरनून जुड़ गई है आपके साथ, और मैं अकेली नहीं जुड़ी हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं. इन द सेंस कि वो लोग जो मुझे हर रोज गुड मॉर्निंग कहते हैं. गुड मॉर्निंग आफ्टरनून. और जब भी आप कहोगे ना यार, थोड़ा सा अपना नाम वाम लिख लिया करो ना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन है ये गुड मॉर्निंग कहने वाले लोग. जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से आलीशान का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग, ये सैफ का मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग. और गुड मॉर्निंग यहाँ पर आलीशान कहते हुए, उसके बाद गुड मॉर्निंग लिसनर, हैव अ ब्लेस्ड डे ऑल ऑफ यू, योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद फ्लावर्स, होप एंड ऑप्टिमिज्म, दैट इज हरपाल संधू फ्रॉम दुखान जिक्रीत. बस ऐसे ही अगर आप भी गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना चाहते हो तो 5000196 इज आवर नंबर. और अगर आज आपका खास दिन है, यानी ये तारीख आपके लिए खास है, 26th of August है, आपका बर्थडे है, या आपका कोई खास का बर्थडे है, या एनिवर्सरी है, एनीथिंग यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, योर वर्क एनिवर्सरी, और द डे यू केम टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा कुछ भी हो सकता है यार. कोई भी तारीख किसी के लिए भी किसी भी तरीके से खास हो सकती है. सो लेट मी नो, अपनी खुशियाँ भी बांटनी चाहिए, क्या बोलते हो? With you always 6 to 10 PM तक, लेकिन राइट नाउ विथ यू इज एपी ढिल्लों मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट.

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT's NoNo. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah.

टंडन कपल यानी सचिन टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और क्योंकि वीकेंड करीब आ रहा है, मतलब हाँ जानती हूँ आज वेडनेसडे है, कल है वीकेंड, बट प्लान आज से करें तो क्या बुराई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून का, प्रोबेबली द लास्ट वीकेंड बिफोर द किड्स स्टार्ट स्कूल, और उसके बाद में एग्जाम्स का सिलसिला, और फिर बिजी इतने हो जाएंगे कि भाई ये वीकेंड बच्चों को अच्छी जगह पर लेकर ही जाओ, एक नहीं दो नहीं तीन चार जगह लेकर जाओ, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे जो बता रही हूँ मैं। यहाँ पर वीकेंड पर आप जा सकते हो मुशर्रफ गैलरिया, जहाँ मुशर्रफ स्कूल चेकलिस्ट 2026 से ये चल रहा है, शाम के 4 से 10 बजे तक टिकटेड एंट्री है, लेट मी टेल यू, और काफी सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज है। फ्री एंट्री के लिए कुछ देखना चाहते हो तो फिर मॉल ऑफ कतर जा सकते हैं आप। ओएसएस स्टेज पर पॉ पेट्रोल शो बाय निकलोडियन ये हो रहा है शाम 5, 6:30 और 8 बजे। वेल 29 अगस्त तक रहेगा ये शो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चे आपके ना रोलर स्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, देन अंटिल 5th of September पता है आपको दोहा ओएसिस में, दोहा क्वेस्ट वहाँ पर ये रोलर स्केटिंग का रिंक है। वेल इसके जो प्राइस है 20 मिनट्स के लिए 25 रियाल है। सो इफ यू किड्स रियली इंजॉय रोलर स्केटिंग, दिस इज वन प्लेस, बट समथिंग आई थिंक सो फॉर ऑल द टॉडलर्स एंड फॉर ऑल द यंग, वेरी यंग किड्स आउट देयर, उनके लिए है कलर वर्स एक्सपीरियंस जो कतारा में है। और देखिए हमारे कतर में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करती है हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट। जैसे एक ना एक कोई चीज होती है, जैसे कलर वर्स ही देख लीजिए, पहली बार कुछ हो रहा है और कुछ यूनिक सा हो रहा है, टिकट भी काफी रीजनेबल है, जैसे 35 कतरी रियाल वीकडेज में है, तकरीबन 50 या 50 कतरी रियाल वीकेंड्स पर है। तो यार इसका पूरी तरह से अगर हम फायदा उठाओगे और जाएंगे तो ही हमारे लिए अच्छे अच्छे इवेंट्स आते रहेंगे, राइट। मीनवाइल आफरीन है आपके साथ, काफी सारे ऑप्शंस आपके बच्चों के लिए तो मैंने बता दिया है, लेकिन ओटीटी कंटेंट पर क्या आ रहा है दिस वीकेंड ये भी बताऊंगी। यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी एंड मीनवाइल एंजॉय जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज में ये गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afrin. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:01 की तरफ. फर्क लगाना श्रेया घोषाल की आवाज में आपको डेफिनेटली दीवाना और मस्ताना बना ही देगी. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: Well, what a song. बाजीराव मस्तानी से ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. और देखो बॉस, वीकेंड आ रहा है तो एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है कि इस बार प्लान आपके गर्मी को डिच करके बिल्कुल घर में रहने का है या फिर बाहर ही जाना है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर. अगर सेकेंड ऑप्शन है आपका कि आपको बस घर में ही रहना है तो आपकी वीकेंड वॉच लिस्ट में काफी वैरायटी आ रही है.
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है.
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: देखिए नया तो बहुत कुछ है दिस वीकेंड फॉर यू टू वॉच. जैसे Z5 पर बंदर, अनुराग कश्यप डायरेक्शन, बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा, सबा आजाद. एंड स्टोरी काफी अनकंफर्टेबल टेरिटरी में जाती है. एक फेडिंग टीवी स्टार पर सीरियस एक्यूजेशन लगता है और फिर कोर्ट से पहले ही मीडिया और पब्लिक ओपिनियन देता है. इट्स अ डार्क इंटेंस कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग थ्रिलर. उसके अलावा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मोड है तो फिर प्राइम वीडियो पर बबीता सिंह रिपोर्टिंग, ये आप देख सकते हैं. एंड अगर फैमिली के साथ कुछ देखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही मजेदार है दिस इज फ्रॉम नेटफ्लिक्स का चुम्बक. चुम्बक नाम का नीना गुप्ता. ओके, लिसन टू द स्टार कास्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नीना गुप्ता है, देवेन भोजानी है, सुमित व्यास है. इट्स गॉट ऑल माय फेवरेट एंड बिग एंसेंबल कास्ट. 5 नेबरिंग फैमिलीज, ओपन डोर्स और वो एडवाइस राय जो किसी को चाहिए नहीं होती लेकिन पड़ोसियों से हमेशा मिलती है. सो वेल, वो जमाना जब नेबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब इन्फॉर्मेशन ना बालकनी से मिल जाती थी. आपने भी जिया है ना वो जमाना. सो आई थिंक सो चुम्बक इज समथिंग यू शुड रियली वॉच. और अगर कोई मूवी देखनी है तो आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा, ये आई थी ना थिएटर्स में कुछ दिन पहले, अब ये OTT पर भी आ रही है. बट यस, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी है. थ्रिलर बता दिया, इन्वेस्टिगेशन बता दिया, फैमिली कॉमेडी बता दिया. तो बस आप बताइए आपका पिक क्या है आउट ऑफ दिस. मीनवाइल बहुत अच्छे गाने लाइन अप है लाइक दिस वन. And we also have
4: Pata humne hai kahaniyan hai.
0: तो कहीं जाना नहीं है आपने क्योंकि मजेदार गाने तो है. और अगला गाना जो आ रहा है यूं ही आपको ले चलने वाला है एक अलग ही दुनिया में. उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर का ये खूबसूरत सा गाना और परफेक्ट सॉन्ग फॉर योर ड्राइविंग. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, poscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La fiesta a la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
4: थोड़ा ख्याल रखना, और मिलते हैं किस दिन।
3: हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा,
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: रेडियो
5: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

देखिए, अगर आपके घर से आज सुबह थोड़ी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स निकल चुके हैं, किचन से ओणम सद्या की प्लानिंग की खुशबू भी आ रही है, तो दोस्तों ओणम आशम सकल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अ वेरी वेरी हैप्पी ओणम टू एवरी वन सेलिब्रेटिंग टुडे। वैसे कतर में ओणम की एक खास बात लगती है कि कैलेंडर में भले ही ओणम एक दिन का हो सकता है, बट द सेलिब्रेशंस डेफिनेटली हियर इन कतर इज नॉट फॉर वन डे। यहाँ कम्युनिटी एसोसिएशंस, ऑफिसेस, स्कूल्स, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ सेलिब्रेशन का सिलसिला ना हफ्तों तक चलते रहता है। तो टेक्निकली द ओणम सीजन हैज ऑफिशियली बिगिन इन कतर। और मुझे ना फेस्टिवल्स की सबसे ब्यूटीफुल बात यही लगती है, आप अपने घर, अपनी स्टेट, अपने कंट्री से कितने भी दूर क्यों ना हो, फूड, क्लोथ्स, म्यूजिक और अपने लोग मिलकर ना थोड़ा सा होम वहीं क्रिएट कर देते हैं। सो वेदर इट्स ब्यूटीफुल पुकलम, द ग्रैंड ओणम सद्या, या फिर गेटिंग ड्रेस्ड इन द ट्रेडिशनल क्लोथिंग, या सिंपली गेटिंग टुगेदर विद पीपल यू लव, May this Onam bring abundance, happiness and lots of reasons to celebrate. So, Ellavarkam, Hridayam, Niranja, Onam Asham Sakal. Dekho, yaad karke main aapke liye bol rahi hu. Kuch bhula kaha, kuch hai, to maaf kar dena. Lekin, happy Onam from all of us. Bas bhavna hai, pahunchna chahiye aap tak. Enjoy your day. Aur bane rahiyega hamare saath, yani Simply Afreen ke saath, Anmarshi. It's hot.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: चेक. यो, दिस वन इज फॉर ऑल द लिटिल रॉक स्टार्स.
2: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल.

0: Well, that was Shreya Ghoshal ki awaaz mein Lattu from the movie Gajni. Yaad aaya aapko ye gaana jisme Aseen thi aur bade hi style mein like runway par she was doing this dance and she was in dressed in amazingly fashionable clothes. Yaad aaya kuch aaya चलो चीज चलो छोड़ो ये मत याद करो कुछ और याद करने की कोशिश करो वो क्या है वो है मेरा सीन. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है. यहाँ पर बॉलीवुड का सीन सुनाने वाली हूँ एंड यू हैव टू गेस विच मूवी इट इज. एंड जो सीन है ना आज का इट्स नॉट क्वाइट अ पॉपुलर सीन बट समवेयर आई फील कि आप लोग ये पहचान लोगे. एंड ये कोई पुरानी मूवी से नहीं है, ये नई मूवी से है, फिर भी आप पहचान लोगे. देखना है, देख लो.
1: लाइट्स कैमरा Scene test.
2: अपनी वाली का फोटो लाए हो?
3: हाँ सर लाए. एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे.
2: वाह बहुत सुंदर है वे.
0: Well, it's a comedy scene. और ये मूवी किरण राव ने डायरेक्ट की थी, if I'm right. Yes, yeah, किरण राव ने बनाई है ना. So, कौन सी मूवी है ये आपने बताना है. 5000186 is my number. And messages आना यहाँ पर शुरू भी हो गए हैं. यार क्या बात है. Let me go and reply to these messages. मोहसिन का मैसेज आ गया है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आ गया है. मैं जाकर इन्हें मैं रिप्लाई करती हूँ. तब तक के लिए आप अगला गाना सुनिएगा दिलजीत पाजी की आवाज में. Do you know the answer to the scene? Message karo Anvirji, it's hot.

0: हर्षदीप कौर की आवाज, यासिर देसाई का साथ और ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर। और देखिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट में। आपको एक सीन सुनाया था, चलिए सीन सुनते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: अपने वाली का फोटो लाए हो?
3: हाँ सर लाए। एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे।
2: वाह बहुत सुंदर है।
0: वेल व्हाट अ कॉमेडी सीन दिस वाज। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जिसने मूवी देखी है उनके जवाब यहाँ सुन लेते हैं।
4: Morning, Afreen.
0: Good morning.
4: Hope you are doing well.
0: I am doing great.
4: This is Lapata Ladies.
0: Yes.
4: And this was directed by Kiran Rao.
0: Bilkul sahi.
4: And yeah, it came in 2024. Thank you.
0: Okay, hi, that is right.
5: Good
0: hi.
5: Morning.
0: Good morning.
5: This dialogue is from movie Lapata Ladies.
0: Yes.
5: By Kiran Rao. Have a nice day.
0: You Thank too. You. Have a great day, Sujan. और बस इसी तरह बहुत सारे messages आए हैं। मोहम्मद यूसुफ खान का message है, मोहसिन का message है, then I have Ansalam messaging me and also Fahim messaging me। और अगर किसी का मैंने अगर miss कर दिया हो तो I'm so sorry. So well, it is Lapata Ladies और ये जो dialogue है रवि किशन ने सुनाया था। And talking और रवि किशन जो आजकल बहुत ज्यादा मैंने देखा रहेगा, आपने देखा रहेगा, मैं तो देख रही हूँ कि मेरे रील्स पर ना ही इज ट्रेंडिंग। आई थिंक सो मेरा एल्गोरिथम बदल गया है। बट अगर आपके भी एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं रवि किशन का लेटेस्ट डांस या लेटेस्ट वो स्वैग वाले कोई वीडियोस आए रहेंगे तो टेल मी। मीनवाइल टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, लेट्स प्ले द नेक्स्ट ट्रैक सुखी बाजी की आवाज में। कोई डाउट मत रखिए कि ये शो आपको पोर करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ഏവർക്കും ഈ മിർച്ചിയുടെ ഓണാശംസകൾ.
1: മിർച്ചി 1, it's hot.
2: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
3: 89.6
1: Mirchi 1. It's hot.
4: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के एग्जैक्टली 8 बजे की तरफ. और अगर आप निकल गए हो अपने घर के घर से अपने काम की तरफ के लिए, तो फिर गारंटीड एंटरटेनमेंट और एक पॉजिटिव बिल्कुल एटीट्यूड आपकी तरफ आ रहा है राइट हियर. और अगला गाना मोहम्मद इरफान की आवाज में, इट्स गोना मेक यू फील सो गुड. एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

देखिए ये वर्ल्ड कप और कतर, ये कॉम्बिनेशन ना काफी फेमिलियर होने लगा है अब। लेकिन अगला वर्ल्ड कप थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इस बार गोल्स नहीं बास्केट्स काउंट होने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। एंड यस, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के लिए दोहा के चार वेन्यूज ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गए हैं अब। लुसेल अरेना, अल अतिया अरेना, दोहेल अरेना एंड अल जनूब अरेना। टूर्नामेंट होगा 27 से लेकर 12 सितंबर 2027 की बात कर रही हूँ। 32 टीम्स होने वाली है टोटल 92 गेम्स के साथ। बट हियर्स अ फैसिनेटिंग बिट, अलजनूब स्टेडियम जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस हुए थे उसको ट्रांसफॉर्म करके एनक्लोज्ड 8200 सीट बास्केटबॉल अरेना बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार एक बास्केटबॉल मैच एक कन्वर्टेड फुटबॉल स्टेडियम में होने वाला है। वाओ, और हम दोहा वालों के लिए बोनस, फीफा के अकॉर्डिंग सारे फोर वेन्यूज रफली 30 मिनट्स के अंदर ही है, मतलब एक ही सिटी में पूरा वर्ल्ड कप। ये तो हमने पहले भी देखा है ना। इनफैक्ट दिस विल बी द लार्जेस्ट फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप एडिशन एवर होस्टेड इन अ सिंगल सिटी, एंड फाइनल होने वाला है लुसेल अरेना में। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद कतर क्लियरली कह रहा है स्पोर्ट्स का जॉनर बदल सकता है, स्टेज नहीं और कंट्री भी बिल्कुल नहीं। माइक से दिल तक आप श्रीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन।
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: अबे चल जा, चल काम कर, चल हट। मैं
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल।

0: 6 decades of excellence in Qatar.
1: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
0: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai, ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala, lekin use pata hai.
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

Well, that was Rishiresh Veronica Jagiri. I mean, actually, ये तो RG's Comics के नाम है, लेकिन actually ये singers के नाम है. हम तुम का ये गाना Right Here on Mirchi. Very good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है right here on Mirchi Mornings. और देखिए भाई, इस वक्त हो चला है कि जरा important बातें भी की जाए. Well, before I see iPay के एक्सचेंज रेट, यकीन मानो या ना मानो कि iPay के ऐप पर आपको कतर के सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलते हैं. अगर नहीं है आपको भरोसा तो खुद ट्राई करके देखो. वेल, आज के एक्सचेंज रेट पर अगर नजर डालें तो एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.21, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.19, बांग्लादेशी टाका ऑन द अदर हैंड इज एट 33.75, श्रीलंकन रुपीज इज एट 90.12 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.8. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

और देखिए भाई, इट इज ऑल्सो टाइम दैट वी प्ले कहाँ गया ये मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल ऑल राइट, आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में कुछ नया निकला है, ऐसा जो शायद आपने पहले खेला होगा, नहीं खेला होगा, आई एम नॉट श्योर, बट वेट, स्टारकास्ट है एक मूवी का और आपने गेस करना है कि मूवी कौन सी है। सो वेल, आज हमारी मूवी में है, आज हमारे मूवी में है शाहरुख खान, ओके, आज हमारे मूवी में है दीपिका पादुकोण और आज हमारे मूवी में है संजय दत्त। बताइए ये कौन सी मूवी की बात कर रही है आफरीन। 5000-1896 इज आवर नंबर। एक और नाम दे देती हूँ यहाँ पर, शायद आपको और करीब ले जाएगा, सानिया मल्होत्रा भी है इसमें। कौन सी मूवी की बात कर रही है अब फटाफट से बताओ। शाहरुख खान, संजय दत्त, सानिया मल्होत्रा एंड दीपिका पादुकोण, कौन सी है ये मूवी। 5000-1896 पर ऑलरेडी आई हैव गॉट मैसेजेस हियर, इंटरेस्टिंग। मैं जब तक के इन्हें रिप्लाई करती हूँ, आप जो है बने रहिएगा हमारे साथ अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय दियो
3: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
4: वेट
3: टेल
4: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं आई टेल यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट आई सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब film hai imagine no but why and he was a filmmaker an actor himself
2: Abhinay Deo the director is talking about his father Ramesh Deo one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen aap sun rahe hain Mirchi it's hot
0: Bollywood Bolder
1: only on Mirchi it's hot
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स लेट मत करो ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे TNC अप्लाई सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: वेद शर्मा की आवाज और ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में मैंने एक स्टारकास्ट बताया था मूवी का और आपने गेस करना था आखिर ये मूवी है कौन सी। वेल बहुत इजी स्टारकास्ट था लेकिन आई थिंक सर ये स्टारकास्ट जैसे मैंने सुनाना शुरू किया आपका डायरेक्शन कोई और मूवी की तरफ चले गया और फिर मैंने पर्पसली एक नाम दिया। वेट सुनो तो पहले जो अभी अभी जुड़े हैं अभी आप सुन लीजिए कि ये कौन सा स्टारकास्ट, ये स्टारकास्ट कौन सी मूवी में है जहाँ पर शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, संजय दत्त है एंड ऑल्सो सानिया मल्होत्रा है। Sounded quite easy in the beginning and then you thought of something else just like Princeton. Hello.
1: Hi, Afreen. Good morning. This is Princeton here.
0: हाँ जी.
1: I was about to say Om Shanti Om but because you mentioned Sania Malhotra,
0: exactly.
1: I believe it should be Jawan. Thanks and have a lovely day.
0: You too, have a great day, Princeton. And इसीलिए मैंने भी ये सोचा कि हाँ फिर लोग ओम शांति ओम कहेंगे तो मैंने सानिया मल्होत्रा भी ऐड कर दिया और फिर आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नॉट ओनली यू इन फैक्ट यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आया है, आफ्ताब का मैसेज आया है, देन आई हैव ताहिर हुज मैसेज डज, मनाली ने भी मैसेज किया है, फलक ने भी मैसेज किया है, देन और कौन है, यस दैट्स ऑल। सो वेल सभी ने जवान बिल्कुल सही कहा है और जवान से अगला गाना प्लेइंग अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स यार। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: ഏവർക്കും ഈ മിർച്ചിയുടെ ഓണാശംസകൾ.
1: മിർച്ചി 1 ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട്.
2: Mirchi mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
3: 89.6
1: Mirchi 1. It's hot.
4: वेल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9 बजे की तरफ और मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ. लेकिन अगला ही गाना जो मैं सुनाने वाली हूँ आपको, रेखा भरद्वाज की नमकीन सी आवाज़ और राघव कौशिक की प्यारी सी आवाज़ में मुसाफिर कैफे का ये गाना इज स्लोली समवेयर क्लिंगिंग ऑन टू यू. आपको रियलाइज़ होगा जैसे सैयारा के गाने इनिशियली थोड़ा सा टाइम लग गया हमें समझने के लिए, लेकिन जब समझ में आए इट रियली बिकेम अ क्लोज पार्ट ऑफ आर हार्ट. वैसे ये वाला गाना दरमिया राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

देखिए, अगर आपके घर से आज सुबह थोड़ी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स निकल चुके हैं, किचन से ओणम सद्या की प्लानिंग की खुशबू भी आ रही है, तो दोस्तों ओणम आशम सखल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अ वेरी वेरी हैप्पी ओणम टू एवरी वन सेलिब्रेटिंग टुडे। वैसे कतर में ओणम की एक खास बात लगती है कि कैलेंडर में भले ही ओणम एक दिन का हो सकता है, बट द सेलिब्रेशंस डेफिनेटली हियर इन कतर इज नॉट फॉर वन डे। यहाँ कम्युनिटी एसोसिएशंस, ऑफिसेस, स्कूल्स, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ सेलिब्रेशन का सिलसिला ना हफ्तों तक चलते रहता है। तो टेक्निकली द ओणम सीजन हैज ऑफिशियली बिगिन इन कतर, और मुझे ना फेस्टिवल्स की सबसे ब्यूटीफुल बात यही लगती है, आप अपने घर, अपनी स्टेट, अपने कंट्री से कितने भी दूर क्यों ना हो, फूड, क्लोथ्स, म्यूजिक और अपने लोग मिलकर ना थोड़ा सा होम वहीं क्रिएट कर देते हैं। सो वेदर इट्स ब्यूटीफुल पूकलम, द ग्रैंड ओणम सद्या, या फिर गेटिंग ड्रेस्ड इन द ट्रेडिशनल क्लोथिंग, या सिंपली गेटिंग टुगेदर विद पीपल यू लव, May this Onam bring abundance, happiness and lots of reasons to celebrate. So, Ellavarkam, Hridayam, Niranja, Onam Asham Sakal. Dekho, yaad karke main aapke liye bol rahi hu. Kuch bhula kaha, kuch hai, to maaf kar dena. Lekin, happy Onam from all of us. Bas bhavna hai, pahunchna chahiye aap tak. Enjoy your day. Aur bane rahiyega hamare saath, yani Simply Afreen ke saath, Anmarshi. It's hot.

0: Mirchi. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
4: पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
4: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
4: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
4: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
4: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
4: आपने सही कह रहे.
3: हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
4: नहीं बोलना, नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
4: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
4: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
4: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा है, बस सेफ फ्लाइट.
4: ओके ओके.
3: आई लव यू.
4: आई लव यू टू.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

देखिए, अब तक तो आपने समझ ही लिया होगा कि कतर में इवेंट जितना बड़ा होता है ना, उसकी तैयारी उतनी ही पहले शुरू होती है। और कतर में एक इवेंट की प्रेपरेशंस 3 महीना पहले से फुल स्विंग में है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। मैं बात कर रही हूँ कतर बोट शो 2026 की, जो अब डेफिनेटली कोई छोटा मोटा मरीन इवेंट नहीं रहा। 4 से 7 नवंबर तक तो है ये। ओल्ड दोहा पोर्ट वंस अगेन ट्रांसफॉर्म होने वाला है इंटू अ मैसिव शोकेस ऑफ यॉटिंग, मरीन लाइफस्टाइल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट एंड अ वाटर फ्रंट एक्सपीरियंस। और ये इसका 3rd एडिशन है। पहले 2 एडिशन के बाद इस बार स्केल और विजिटर एक्सपीरियंस को और एक्सपांड किया जा रहा है। एग्जिबिटर्स, स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स के साथ प्रेपरेशंस ऑलरेडी अंडरवे है और कमिंग वीक्स में नए ब्रांड्स और एक्सपीरियंसेस भी अनाउंस होने वाले हैं। वेल, इंटरेस्टिंग बिट ये है, कतर एयरवेज इज द ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर, सो क्लियरली कतर बोट शो इज पोजिशनिंग इटसेल्फ बियॉन्ड जस्ट अ लोकल इवेंट विद इंटरनेशनल विजिटर्स ऑल्सो इन द पिक्चर। वेल, लग्जरी देखना है तो बिल्कुल आप जा सकते हो। डेट सेव कर लीजिए, 4th to 7th नवंबर, ओल्ड दोहा पोर्ट। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

0: लोग क्या कहेंगे, ये ख्याल हमें हमेशा सताता है ना। देखो कुछ नया पहनो तो लोग क्या कहेंगे, करियर में रिस्क लो तो लोग क्या कहेंगे, अपनी मर्जी से जिंदगी जियो फिर तो लोग बहुत कुछ कहेंगे। बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद ना हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पीपल विल हैव ओपिनियंस वेदर यू आस्क देम और नॉट। तो जब कमेंट्री फ्री में मिलनी ही है तो लाइफ ही अपनी टर्म्स पे जियो। और इसी ख्याल पर आज आफरीन की डायरी से एक कविता है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो कवि कहते हैं, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना ही है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। तो लोग देख रहे हैं, देखने दो, बस जो भी करो ठीक से करो। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची, इट्स हॉट।

देखो नेक्स्ट वीक से ना कतर के बहुत सारे घरों में मॉर्निंग साउंड ट्रैक चेंज होने वाला है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी तक ना हर घर में ऐसा था कि सोने दो ना, हॉलीडेज है, नेक्स्ट वीक से हो जाएगा, उठो उठो उठो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। फिर किसी का यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा होगा, किसी का एक शू मिसिंग होगा, स्कूल बैग रेडी करना है, और बीच में सबसे बड़ा सवाल, लंच बॉक्स में क्या दूं? बिकॉज बच्चों को चाहिए टेस्टी और पेरेंट्स को चाहिए न्यूट्रिशियस, एंड ऑनेस्टली दोनों का मिडिल ग्राउंड मिल जाए तो मॉर्निंग थोड़ी ईजियर हो जाती है। फ्रेश मिल्क, चीज, एग्स या लंच बॉक्स में कभी एक लिटिल चॉकलेट ट्रीट, मज़ेदाटी कैन बी पार्ट ऑफ दीज एवरीडे चॉइसेस, बिकॉज नेक्स्ट वीक से इट्स बैक टू लर्न, टू प्ले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू ग्रो, देन ग्रो विद मज़ेदाटी फ्रेशली फ्रॉम कतर। इसी के साथ मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है खत्म। कल फिर से मिलेंगे राइट हियर ऑन दिस सेम शो, मिर्ची मॉर्निंग्स विद सिंपली आफरीन। इट्स हॉट।

यार बदलते वक्त के साथ इन तीन ट्रेडिशंस को बदलते हुए तो मैंने भी देखा है। मिर्ची अंशु यार बचपन के दिनों में ना मुझे वॉचेस का बहुत शौक था, तो बस वो छोटी सी अंशु अपनी मम्मी की काली बेल्ट वाली वॉच पहन हर दिन स्कूल जाया करती थी। लेकिन पापा को लगा यार कोई तो फैंसी वॉच उसके पास होनी चाहिए। फिर क्या था, पहले मिनी माउस वाली वॉच, फिर वो बटरफ्लाई वाली वॉच पूरे स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड रही। वक्त बदला, हम पहुंचे कॉलेज एंड लगा भैया अब तो ब्रांडेड वॉचेस का जमाना है। फिर क्या था, जिंदगी में शामिल हुई पहली ब्रांडेड वॉच टाइटन की, अरे बस वही जिसे कटरीना कैफ ने भी पहना था। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे जब हम काम करने लगे तो लगा भैया दो चीजें अब बदलने की बारी आ गई, अपने कपड़े एंड कपड़ों के साथ मैचिंग वॉचेस। तो अब वो घड़ी के डब्बे में एक नहीं कम से कम 10 घड़ियां हुआ करती थी। खर्चे भी बढ़े और हाँ वक्त को हैंडल करने का तरीका भी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर जमाना आया जब ये खर्चे थोड़े कंट्रोल हुए, जब एक घड़ी ने सारी ट्रेडिशनल वॉचेस को टेक ओवर कर लिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वॉचेस। याद है क्या गजब क्रेज जो आज तक कहीं ना कहीं कंटिन्यूड है। लेकिन एक बात बताऊं, कहते हैं ना सर्कल जो है कहीं ना कहीं पलटता भी है और पूरा भी होता है। तो एक बार फिर से कुछ तो बदला है, लेकिन क्या बताती हूँ आपसे कुछ देर में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La
1: firma la burka.
2: Mirchi, burka.
1: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: भाई। आप ही रखो यार, आप रख लो, ये बीच में रख लो। अरे यार, पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना।
3: हाँ?
1: भैया पैसे भाड़ में गए।
3: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसे ही टेंशन में लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot।
7: ओणम पन्नोणम तिरुवोणम पन्नोणम।
8: Hi, this is Shaji Kailash. Radio Mirchi ella listeners num ende onashamsagal. Sangathi hot aanu.
9: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
11: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
10: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: समय के चक्र की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि ये पलटता भी है और पूरा भी होता है।
1: मिर्ची अंशु।
0: तो समय के चक्र ने घड़ी के कांटे को आगे बढ़ाते हुए ये अपनी जिंदगी में भी शामिल कर ही लिया। जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि किस तरह ट्रेडिशनल वॉचेस की जर्नी एक पॉइंट पर आकर थोड़ी रुकी और किसी ने इसे पूरी तरह से टेक ओवर किया, एंड वो थी स्मार्ट वॉचेस। और आप हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मार्ट वॉच जैसे ही दुनिया में आए किस तरह लोगों की जिंदगी में एक अलग सा नयापन आया, एंड वो सारी की सारी ट्रेडिशनल वॉचेस जो हैं किसी पिटारे डब्बे के अंदर कहीं खोसी गई। लेकिन अगर आज के ज़माने इन दौर को देखने की कोशिश करें तो एक बार फिर से अब लोगों के दिल में अगर कोई ख्याल है तो भैया बस यही कि मैचिंग कपड़ों के साथ वो मैचिंग वॉचेस तो होनी ही चाहिए, वो डिज़ाइनर लग्जूरियस। तो अगर आपको लगता है कि आपके ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं, एंड अंशु की जिंदगी की तरह वक्त ने आपकी जिंदगी में भी उलटफेर किया है, तो इतना समझ जाइए दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन हमारी जिंदगी में लौट कर आ रहा है 28th of September से लेकर 3rd of October तक, अभी तक के अपने सबसे बड़े एडिशन के साथ, जहां पर तकरीबन 175 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। तो मैं तो कहती हूँ आप और हम दोनों ही शॉपिंग की तैयारी करते हैं। आप असल शॉपिंग करना, मैं आपके साथ विंडो शॉपिंग करूंगी, क्योंकि क्या है ना, आप जो खरीदेंगे कहीं ना कहीं पहनने वाला कोई तो हो। शेयरिंग इज केयरिंग। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: बलजिंदर नौटियाल की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ सोलफुल व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इतना बता दूं मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:37।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: देखो यार, बात इतनी है कि आज का दिन भी बड़ा कमाल है, वक्त जो है इस वक्त वो और भी ज्यादा लाजवाब है।
2: मिर्ची अंशु
0: हला, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का जो है मैं तो लेकर आ ही रही हूँ, लेकिन आज के दिन में मुझे ये बात का यकीन है, ना जाने कितने लोगों की प्लेट्स के आगे, या यूं कहूँ वो केले के पत्ते के आगे, हर तरह के फ्लेवर जो है ना आज हमको देखने को मिल ही जाएंगे। बिकॉज आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग। दिल से आप सभी को ओणम की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी ओणम। यार पता है, कुछ और हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कतर में रहने के बाद, सारे कल्चर्स को महसूस करने के बाद, पता है चाहे कोई भी ओकेशन हो, मैं ईद की बात करूँ, दिवाली की बात करूँ, होली की बात करूँ, ओणम की बात करूँ, क्रिसमस की बात करूँ, यार ऐसा लगता

आपकी जिंदगी में हर एक अच्छे फ्लेवर जो है ना वो हमेशा बने रहे। आज का दिन जो है बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। ओनम का एक खास सिग्निफिकेंस भी है। अभी क्या है ये कुछ देर में बताती हूँ। नाउ दैट इज गोइंग टू बी फॉर द सेक ऑफ पीपल हु आर नॉट मच अवेयर ऑफ ओनम, बट टू ऑल द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग येट अगैन अ वेरी हैप्पी ओनम। एंड अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यार पलटे में मुझे भी तो विश कर दो, अच्छा लगेगा। 5000 1896 5000 1896 आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: She's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
5: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
3: उसे सब पता है
6: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
3: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर दिस 25th September एट QNCC and to add the double bonanza of entertainment get ready to watch music and dance duo Charan and RC एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स The Mentalist Suhani Shah live

0: Well, Jubin Nautiyal and Tulsi Kumar ki khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is. To all the wonderful people, yet again a very happy Onam.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: देखिए जी, मान्यता तो यही है, धारणा तो यही है कि राजा बलि जो है एक बार फिर से आज लौट के आने वाले हैं। भाई वही राजा जिन्होंने अपनी प्रजा की इतनी रक्षा की, उनकी इतनी केयर की, जिनके राज में पूरे के पूरे साम्राज्य में अगर कुछ बना रहा तो वो है ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, इसके अलावा बरकत, तरक्की एंड खुशहाली। ज़रा सोचिए, जब जिंदगी में ये सारे के सारे आलम हो कि घर का कोई लीडर हो या तो फिर देश का कोई लीडर हो, वो आपको महफूज फील कराए, वो आपको ये महसूस कराने की कोशिश करें कि चाहे जो भी बात हो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तो ज़िंदगी जो है कितनी आसान होने लगती है एंड लोग जो हैं दिल से उसे किस तरह से सेलिब्रेट करने लगते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज मैं सारी बातें कर रही हूँ, देश के राजा की बात कर रही हूँ, तो हमें हमारे अमीर की भी शायद यही खूबियां जो है ना नज़र आ रही है। शेख तमीम ने, हिज हाइनेस ने हम सबको, चाहे हम रेजिडेंट्स हों या तो फिर हम सिटीजन्स हों, हर किसी को जिस तरह की कतर में इक्वल राइट्स मिली हुई है, सेफ्टी को सबकी प्रायोरिटी बनाई हुई है, भाई दिल जो है ना खुशी से गदगद होता है एंड बड़ा अच्छा लगता है कि कतर को आज मैं अपना दूसरा घर कह सकती हूँ। इतना ही कहना चाहूँगी, ये तो बात हो गई राज्य की, साम्राज्य की। अगर इस पूरे के पूरे सिनेरियो से या ओनम फेस्टिवल के सिग्निफिकेंस को देखने की कोशिश करें तो एक बात समझ में आती है, ज़िंदगी में बने तो ऐसा बने कि लोग अपने दिल की बात आप तक आकर कह सकें, जिंदगी में बने तो ऐसा बने कि आपके आगे आने पे कभी किसी को कोई डर, कोई हिचक ना हो, जिंदगी में बने तो ऐसा बने कि अपने अलावा औरों की सोचने की और समझने की क्षमता को आप खूब अच्छे से खुद समझ सकें। बस यार, ओनम के वैल्यूज़ को दिल में और अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं और ओनम सद्या का आज दिल से मज़ा भी लेते हैं। क्या कहती पब्लिक? येट अगैन अ वेरी हैप्पी ओनम, और आपके विशेस का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से मुझे ओनम का विश भेजो। 5001896 इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए आपके लिए पेश है ये ओनम का गाना, एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: उसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: बादशाह नासर गिल की आवाज़ इनकी, आप पावर पैक गाना। वैसे अगर पार्टी शुरू होने की बात करें, सच कह रही हूँ, जब भी कोई फेस्टिवल का मूड हो, घर में शादी का सीजन हो, हाय मेरे अंदर का ये डांस वाला कीड़ा जो है ना, ये निकल कर बाहर आता है एंड 101% आता है।
2: मिर्ची अंशु।
1: देखो अब इसे कहते हैं डबल धमाका। मतलब मैं ये कहूँ कि आप जो है किसी एक इवेंट को अटेंड करने आए, इन सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे दूसरा एंटरटेनमेंट का जरिया भी जो है आपकी जिंदगी में शामिल ना हो जाए, तो भैया आप इसे डबल बोनांजा या डबल ऑफर ना कहें, धमाका ना कहें, तो फिर क्या ही कहें। और ऐसे कोई एक्सपीरियंस अगर आपका कहीं होने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी एट सुहानी शाह लाइव इन कतर, 25th of September एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पे आपके दिमाग को घुमाने, पूरी तरह से हिलाने सुहानी शाह आएंगी। वहीं दूसरी तरफ ये इंश्योर करने कि आप जो है थरके बिना, हिले बिना वहां से ना जाएं, ये चरण और उनकी डांसिंग पार्टनर डुओ 101% कंफर्म करेंगे। आज की डेट में म्यूजिक सेंसेशन की बात करें, पंजाबी गानों की बात करें, तो भाई ऐसा तड़कता भड़कता कॉम्बिनेशन लेकर चरण आ रहे ना हमारे बीच कि हम जो है रियली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है उस पूरे के पूरे सिनेरियो के लिए, उस म्यूजिक सेंसेशन के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक बात आपको मैं तय तरह से बता दूं, सुहानी शाह का मैजिक तो आप लाइव विटनेस करेंगे, दूसरी तरफ म्यूजिक के सेंसेशनल हंगामे में हम आपको इंडल्ज करेंगे। तो बस अगर अभी तक टिकट्स बुक नहीं किए तो फटाफट से प्लान जो है कंफर्म कर लो। किसी भी लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म में जाना है, चाहे मैं प्लैटिनम लिस्ट की बात करूं, स्मूनो सिटी की बात करूं, क्यू टिकट्स की बात करूं, एंड अपनी टिकट्स को 101% इंश्योरेंस सिक्योर कराना है। अभी भी चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जिसके चलते 20% का ऑफर आप अवेल कर सकते हैं अक्रॉस ऑल टिकट कैटेगरीज, एंड 160 रियाल्स में आपको दो टिकट्स भी मिल रही हैं। बॉस फायदे का सौदा है, बाद में मिलेगा नहीं। महमूद एंड राघव चैतनिया, किसी तो माशुका को ढूंढ रहे हैं, जरा देखें कौन है वो। 89.6 मिर्ची वाला, इट्स हॉट, बंदी का नाम अंशु।

0: श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज, जब वी मेट फिल्म का नाम, एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक। कुछ गाने होते हैं ना जो आपकी मुलाकात खुद से कराते हैं, तो ये कैरेक्टर एंड ये गाना मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम जरूर करता है बॉस।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, मैं एक बात जानती हूँ कि हम जो है ना जिंदगी में कई रोल अदा करते हैं, कई किरदार निभाते हैं। आप किसी की बेटी होते हैं, आप किसी की बहन होते हैं, आप किसी के भाई होते हैं, यू नो किसी के बेटे होते हैं, किसी के हस्बैंड होते हैं, हम किसी की वाइफ होते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमारा एक अलग किरदार होता है, लेकिन इन सारे रोल्स को निभाते निभाते हमारे कंधे पे अगर कुछ आती है ना, तो वो है ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। अब ऐसे में कभी कोई गाना, कभी कोई फिल्म, कभी किसी और की कोई बात आपकी मुलाकात आपके खुद के असल अक्स से कराती है कि हाँ यार, मैं कभी ऐसी हुआ करती थी, मेरी सोच भी कुछ ऐसी हुआ करती थी, यू नो ऐसी हरकतें मैं भी कभी किया करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी काम, कितनी भी जिम्मेदारियाँ या कितने भी किरदार क्यों ना शामिल हो जाएं, जिंदगी का असल मज़ा या असल सुकून तो उसी बात पे है कि इन सभी को निभाते निभाते, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते, अपने असली अस्तित्व को ना हम कभी ना खोएं। हम जैसे हैं वो हम हमेशा वैसे ही बरकरार रखें। वो मुखौटा कभी ना आए यार, ना यार, वो स्टेज पे ही अच्छा लगता है, वो मंच पे कलाकारों पे ही अच्छा लगता है ना। अपनी ज़िंदगी का मुखौटा अगर कोई हो ना, तो वो अपना असला रूप हो। तो जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, हम तो वैसे ही रहेंगे भैया, ये बात तो तय। हमारी ज़िंदगी का ये रूल जो है ना, ये पक्का है। तो चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करती हूँ, जिंदगी के जब इतने किरदारों को आप निभाते हैं, तो उन सभी किरदारों में आपके लिए आपका सबसे अजीज, सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है? मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का। हाउ अबाउट यू? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम। मिर्ची वन कतरिया, मिर्ची अंशु। मीनवाइल इश्क विश्क रीबाउंड से ये अगला पावर पैक गाना आपके लिए। एंजॉय। बदी का नाम अंशु।

0: बंजारी की खूबसूरत सी आवाज एंड दिस लवली ट्रैक. ये प्यारा सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये पते काम की बात भी आप तक पहुंचा दी जाए.
1: मिर्ची अंशु.
0: हाँ जी, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे काम की बात यह है कि चूंकि आप लौटने की तैयारी कर रहे हैं छुट्टियों के बाद, घर वाले परिवार वाले आपसे एक बार मिलने की तैयारी वापस कर रहे हैं, स्कूल रीजॉइनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरी तरह से आपकी सहूलियत की 101% तैयारी जो है वो कर ही ली है. अगर ट्रॉलीज की बात करें, लगेज बहुत ही ज्यादा है तो फ्री ट्रॉलीज जो है आपको 101% वहां पे मिलेंगी. बच्चों के लिए स्ट्रोलर्स की बात करें तो वो भी वहां पर अवेलेबल है. सिस्टमैटिक तरह से पूरा का पूरा काम हो इसका 101% इंतजाम जो है वक्त हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जरूर किया गया है. तो बस एक बार आप जो जब आपके घर वाले लौट रहे हैं, साथ में अच्छा खासा मिठाई का डब्बा भी लेकर आ रहे हैं, मुझे पता है मेरे लिए, हमारे लिए वहीं दूसरी तरफ हम जो है दिल खोल के आपको वेलकम करने के लिए, आपके घर वालों को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यार, बैक टू स्कूल, बैक टू बिजी सीजन, बैक टू बिजी रोड्स, ये हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है. लेकिन आपकी जिंदगी में एक बार फिर से अच्छा गाना जो है वो भी शामिल हो गया है. जरा सुने, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा।
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

जोश प्रार एंड परंपरा टंडन की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम बागी 4 एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई साहब एक बात बताऊं, इस फिल्म में कुछ और अच्छा हो या ना हो, लेकिन हाँ ये गाना बड़ा अच्छा है। और हाँ टाइगर श्रॉफ भी काफी हैंडसम लगे, नहीं वो मेरे दिल की बात है। वैसे इस वक्त अगर अपने दिल की बात बताने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसा डिश है जो अक्सर मेरे दिल पर ही रूल करता है। भाई साहब खाना जो है ना मेरी जिंदगी के अभिन्न अंगों में से एक है। एब्सोल्युटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में खुशी के पैमानों को जज करने की कोशिश करूं ना तो उसमें जहां पे एक तरफ फैमिली आती है, मेरा काम आता है, घूमना फिरना आता है, उसके बाद ये जो चौथे पिलर को अगर कोई पूरा करता है तो वो एक अच्छा खाना। हाँ मतलब वो एक प्लेट जो है, प्लेटर जो है, हर दिन हर वक्त मेरे सामने हो एंड खुशी जो है ना अपरंपार होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से दिखती हूँ कि हवा से भी फूंक मारो तो उड़ जाएगी नहीं यार, मैं खाती हूँ, मैं अच्छी तरह से खाती हूँ एंड आई रियली एंजॉय सम होलसम एंड गुड मील, गुड फूड। तो चलिए एक बार फिर से खाने की कोई तो पहेली है जो आपको बुझानी है एंड ये बताना है कि ये डिश जो मेरे दिल में राज करता है क्या आपके दिल में भी उतनी हुकूमत उसकी है। एंड अगर लगे कि आपने पहचान लिया ये डिश कौन सा है तो करेक्ट आंसर जल्दी से भेजना है 5000186 पर, 5000186। We will get connected there. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। जरा गौर फरमाए, तवा मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब्जियां मेरी यार। तवा मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब्जियां मेरी यार। प्याज नींबू अगर मिल जाए तो लगता हूं मजेदार। मक्खन में सका एक साथी रहता है हरदम मेरे साथ। मुंबई की कोई तो फेमस डिश हूं, अब बताओ मेरी बात। तवा मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब्जियां मेरी यार। प्याज नींबू मिल जाए तो लगता हूं मजेदार। मक्खन में सका एक नरम सा साथी रहता हरदम साथ। मुंबई की कोई तो फेमस डिश हूं, अब बताओ मेरी बात। 5000186 eagerly waiting for your messages and I would really appreciate your audio bite. Meanwhile, Guru Randhawa and Arjun ki awaaz mein zara suit-woot pehen ke taiyar ho jaya jaye. Enjoy. Bandi ka naam Anshu.

Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: मामी खान की पावर पैक आवाज में सच कह रही हूँ यार, अपने देश की याद जो है ना, राजस्थान की याद जो है इस गाने के जरिए बस मुझे आ ही गई।
1: मिर्ची अंशु।
0: हाँ जी, पधारो माहरे देश। अभी फिलहाल मेरे शो पे पधारो आप तो यार गाने जो है ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको आपके रूह से कनेक्ट कैसे किया जाए। उसी तरह से खाने भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आपके पेट से और आपके टेस्ट से कनेक्ट कैसे किया जाए। भैया कहीं भी किसी भी मुल्क का किसी भी रीजन का खाना हो, टेस्ट अगर अच्छा हो ना तो वो तो हमें बिल्कुल अपना ही खाना लगता है। वैसे कोई तो अच्छा सा खाना है, कोई तो डिश है जिसकी कहानी अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच बयां की, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये डिश है तो है कौन सी। चलिए फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन पहली रिपीट करती हूँ, सुनते सुनते अगर बुझा ली तो सही जवाब भेज देना 5001896 पर। एंड हियर इट गोज। तवा मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब्जियां मेरी यार, प्याज नींबू अगर मिल जाए तो लगती हूँ मजेदार, मक्खन में सिका मेरा साथी है नरमारम, रहता हरदम मेरे साथ, भाई मुंबई की मैं कोई तो फेमस डिश हूँ, अब बताओ मेरी बात। चले देखें लोगों का क्या ही कहना है।
2: अंशु जी गुड आफ्टरनून, मैं काशी बात कर रहा हूँ। अंशु जी आपने जो अभी सवाल पूछा है वो है पाव भाजी, मुंबई की पाव भाजी। थैंक यू अंशु जी।
3: हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज मंजरी हियर एंड योर आंसर फॉर दैट तवा एंड समथिंग सॉफ्ट विद बटर, इट्स मुंबई फेमस पाव भाजी।
4: अंशु मेरी बहन, ये आपका सवाल का जवाब ये है कि पाव भाजी।
0: क्या बात जी, थैंक यू सो वेरी मच मेरे भाई। एंड टू ऑल द वंडरफुल पीपल हु रिप्लाइड, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे मैं मोही शाह की बात करूँ, समीर की बात करूँ, यूसुफ की बात करूँ, रैना, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल हु कीप पार्टिसिपेटिंग इन माय शो एंड कीप एडिंग जॉय इन माय लाइव्स। एब्सोल्युटली आपने जो कहा ये है पाव भाजी, वी आर सब्जियां, मक्खन, नींबू, प्याज एंड साथ में वो गर्मा गर्म नरम सब पाव, हाय अगर ये मिल जाए तो जिंदगी जो है बन ही जाए। बस इतना बता दूं ये मुंबई में एक कम्फर्ट फूड के तौर पर ये पूरी तरह से बना, जब लोगों को लगता था कि ज्यादा वक्त नहीं है, रात की बची हुई सब्जियां फटाफट से बस अब कुछ खाने को मिल जाए, रोटी बनाने में जब जब लोगों ने आलस किया पाव ने तब तब जो है रोटी की जगह ली। एंड हमारी जिंदगी में अगर कुछ आई तो ये है डेलिकेसी, दैट इज पाव भाजी। बढ़िया है, चलिए लेकिन आज पाव भाजी नहीं, आज तो ओनम सद्या की बारी है। आप में से कितने लोग आज सद्या खाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे वो हैंड्स अप चाहिए, हाई चाहिए। 5001896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची कतरिया मिर्ची अंशु। ओनम की इस खुशी को मनाते हुए मिर्ची में अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Pepe Milciu.
1: Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, burga, burga, la vizba la burga, Milci burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात,
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला? तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: मैं फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
2: वाली बातें कर रहा
3: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
3: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिजू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिजू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: उदित नारायण एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज एंड अगला प्यारा सा गाना फीचरिंग प्रीति जिंटा प्रिटी प्रिटी एंड साथ ही आमिर खान, फिल्म का नाम दिल चाहता है। वैसे ये सवाल जो है ना, लोग प्यार करने के पहले कम, प्यार हो जाने के, शादी होने के बाद जो है अक्सर पूछा करते हैं। मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे मामला कुछ उल्टा ही हुआ है।
1: मिर्ची अंशु।
0: लेकिन देखो बात इतनी है कि इस वक्त ना मैं आपको ऐसा कोई सवाल पूछने का कोई मौका दूंगी नहीं, क्योंकि बात इतनी है जब दिमाग सही काम पे फोकस्ड रहे, हम ऐसा चाहते हैं तो क्यों इधर उधर की बातें करना। एंड भैया देखो जिंदगी का वो वक्त आ चला है कि अब जो है ना अपना फोकस हम 101% कहीं और दिल खोल के लगा ही लें। भाई साहब अगर आज की तारीख को देखने की कोशिश करेंगे तो 26 अगस्त जो है आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी में आ ही चुका है। एंड इसके साथ ही महज 2 से 3 दिनों की दूरी पर हैं हम। एंड उसके बाद कोई तो रंग जो है वो जरूर बदलेगा जी, आपकी और मेरी खुशी का रंग, जो फाइनली अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी। एंड उसके बाद ये रियलाइज कि बॉस ने इंक्रीमेंट ना किया तो क्या हुआ, ऑफिस वालों से तो उम्मीद हमने छोड़ ही दी है। ये ऑर्गेनिकली नेचुरल प्रमोशन जो आपकी और हमारी जिंदगी पे हो रहा है ना, हम तो उस पे फोकस करें। अच्छे एक्सचेंज रेट्स वाले प्रमोशन की बात कर रही हूँ गुरु। चले देखे कि आज का पैसा आईपे मनी में क्या ही बोलता है। वेल भैया अगर आज के पैसे को देखने की कोशिश करें तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिल रहे हैं ओनम के मौके पर अच्छे एक्सचेंज रेट्स 26.21। एंड इस खुशी को हम जो है बिल्कुल पाकिस्तान भी पहुंचा रहे हैं, 76.19 सद्या शेयर करके जो खा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेशी टका की बात करें तो 33.75। कोई ना जी, आप जो है मिस्टी दोई ले आना, हम आपको पायसम खिलाएंगे। लेकिन लंकन रुपीज की बात करें तो 90.12 का गजब वाला रेट तो यहां पे भी मिल ही रहा है। साथ ही नेपाली रुपीज को देखें 41.76। चलिए जी अच्छे एक्सचेंज रेट्स के साथ हमारा तो सद्या खाने का दिल भी पूरी तरह से हो ही चुका है। अरे ओनम का जो मौका है, हैविंग सेड दैट कीप लिसनिंग टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एक्सचेंज रेट्स इज ब्रॉट टू यू बाय

0: बचपन से लेकर आज तक ये एक ऐसी कोशिश है जो मेरी जिंदगी में जरूर कंटिन्यूड है।
1: मिर्ची अंशु
0: कि बस ये समझ पाऊं कि मेरी मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं तो पापा के दिमाग में क्या चल रहा है, दादा दादी मेरे बारे में क्या ही सोच रहे हैं, मेरे टीचर्स क्या सोच रहे हैं। अरे इस दोस्त की कहानी तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आज तक बॉस की कहानी भी समझने में पूरी तरह से फेल हो चुकी हूँ। मेरे से जुड़ी हुई वेल किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक ऐसी कहानी है जो आप और हम न जाने कितनी बार पढ़ने की, खोजने की, ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन अक्सर जो है नाकाम रहे। नहीं, हमें लगा कि हम तो सब जानते हैं, लेकिन बेटा पिक्चर पूरी तरह से तुम्हारी आंखों में धुंधली ही है, लेकिन कोई और है जो उस पर्दे को साफ करने आ रही है एंड सबके दिमाग के खाने जो है ना वो खोलने आ रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह, 25th of September, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पे एक तरफ मैजिक एंड मेंटलिज्म का अनोखा रंग हमको देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चरण अपनी पार्टनर के साथ जब आएंगे तो म्यूजिक का सेंसेशन भी हमें जरूर महसूस होगा। तो मैजिक एंड म्यूजिक के इस गजब से कॉम्बिनेशन को अगर आपको लाइव विटनेस करना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू हेड ओवर टू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट और स्नोनो सिटी एंड बुक योर टिकट। देखो साफ करने आ रही है एंड सबके दिमाग के खाने जो है ना वो खोलने आ रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह, 25th of September, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पे एक तरफ मैजिक एंड मेंटलिज्म का अनोखा रंग हमको देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चरण अपनी पार्टनर के साथ जब आएंगे तो म्यूजिक का सेंसेशन भी हमें जरूर महसूस होगा। तो मैजिक एंड म्यूजिक के इस गजब से कॉम्बिनेशन को अगर आपको लाइव विटनेस करना

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय दियो
3: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
4: वेट
3: टेल
4: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
2: अभिनय दियो द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश दियो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग

0: कार्पेट, अभी तुमने फ्लाइंग कार्पेट
1: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू, रेखा भारद्वाज एंड राघव कौशिक की इतनी प्यारी सी आवाज में मुसाफिर कैफे का ये जो गाना है ना, दिस हैज बिकम माय ऑब्सेशन. मतलब मेरे ऑल टाइम फेवरेट गानों की लिस्ट में ये गाना जो है जरूर ऐड हो ही चुका है. कॉस वैसे एक बात बता दूं, ऑल टाइम फेवरेट गाने के बाद जब घड़ी का कांटा एक बजे की ओर इशारा करने लगे एंड मौका भी हो दस्तूर भी हो तो ऑल टाइम फेवरेट मील की भी बात आती है. एंड भैया आज के दिन ना हर जगह आपको रौनक ही रौनक लग रही है. जैसे कि मैंने एकदम शुरू में कहा था भाई, कतर की सबसे खूबसूरत खास बात यह है कि इस एक जगह ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि मिक्स्ड कल्चर्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हर एक कल्चर के बीच रहकर उनकी वैल्यूज को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, उस रंग में रंगने का मजा ही कुछ और है. एंड हमारे पास एक छोटे से गेस्ट हैं जो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं. इनका नाम है आयाम. आयाम जैन, हाय.
1: हेलो.
0: सो व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट टुडे?
1: ओनम एंड द सद्या.
0: ओनम एंड द सद्या. तो सद्या क्या है?
1: सद्या इज लाइक फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड इट्स वेरी फ्लेवरफुल टू ईट.
0: अच्छा, सो इट्स अ मील.
1: यस
0: इट्स. एंड सद्या में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है?
1: पायसम.
0: पायसम, क्या बात है, आप पहले कभी पायसम खाए हो?
1: बहुत बार.
0: बहुत बार. सो यू लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग पायसम अगेन टुडे?
1: यस.
0: यस, यू आर गोना बी गिविंग मी द ट्रीट?
1: यस.
0: सो ये हमारे जूनियर आरजे जो हैं ये तो पूरी तरह से तैयार हैं एंड मिर्ची की पूरी टीम भी तैयार है. तो एक बार फिर से पूरे दिल से मिर्ची की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी ओनम. चलिए जी, हम तो अपनी जिंदगी में सद्या के साथ सेलिब्रेशन मोड को एंटर करवाते हैं. आप जो है ओनम की वैल्यूज को, काइंडनेस को, जेनरोसिटी को, सेलिब्रेशन को जिंदगी में शामिल करें एंड ऊपर वाला आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां जो है ना हमेशा लेकर आए, बस यही दुआ है. विशाल मिश्रा की आवाज में ये अगला गाना आप तक पहुंचाती हूँ, बंदी का नाम. अंशु मसलाम हबीबी.

0: इस बार बॉन्ड को सेलिब्रेट करना है या हिपोक्रेसी को, ये समझ नहीं आ पा रहा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून हूँ आप, और भाई रक्षाबंधन आ रहा है, और हर साल की बात, इस बार भी हम बात करेंगे प्यार की, प्रोटेक्शन की, भाई बहन के बॉन्ड की। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक राखी एड के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन प्रोटेक्शन से ज्यादा कृति सैनन के कपड़े पे हो रही है। सो बेसिकली इस एड में कृति सैनन के आउटफिट को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि भाई उन्होंने ब्रालेट कैसे पहन लिए, और ये भाई को राखी बांधते हैं ना, कुत्ते को राखी क्यों बांध रही हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। देखो, हमारे भारत वर्ष में एक फीमेल के तौर पे पैदा होके इतना वक्त बिताने के बाद मैं तो डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि भाई अगर यहाँ एक लड़की साड़ी पहने तो वो कल्चर्ड है, सलवार सूट पहने तो संस्कारी है, जीन्स पहने तो मॉडर्न है, शॉर्ट ड्रेस पहन ले तो भाई उसके कैरेक्टर पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, और अगर किसी फेस्टिवल पर उसने अपनी चॉइस का आउटफिट पहन लिया तो त्राहिमाम सडनली उसके वैल्यूज भी जज होने लगते हैं। बट दी एक्चुअल क्वेश्चन इज कि भाई कपड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब से बन गए? देखो, मेरे हिसाब से ना ये हिपोक्रेसी प्रोमैक्स लेवल पे है, क्योंकि जो लोग ऑफेंड होके इस एड के ऊपर बवाल क्रिएट कर रहे हैं ना कहीं उनकी जिंदगी, उनकी मानसिकता और उनकी नजर सब अल्टीमेट लेवल पे खराब है। तो जो लोग एक्चुअल में बदलाव लाना चाहते हैं, लेट्स प्रॉमिस दैट इस रक्षाबंधन, भाई बहन के इस बॉन्ड में सिर्फ प्रोटेक्शन उसके जिंदगी को लेकर ना हो, उसके चॉइसेस को लेकर भी हो, उसकी एजेंसी को, उसकी इंडिविजुअलिटी को लेकर भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके कपड़ों को उसके कैरेक्टर का स्केल ना बनने दे। क्योंकि यार ट्रेडिशन तब तक खूबसूरत है जब तक वो हमें जोड़ती है, जब वो किसी और की चॉइस कंट्रोल करने लगे तो हमें ट्रेडिशन नहीं अपनी सोच पे सवाल उठाना चाहिए। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: सूरज

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kon?
2: Hello, Vipin.
1: Kon bol raha
2: hai? Sta. Main passport office se bol raha hoon. Aapne passport apply kiya tha?
1: हाँ पासवर्ड अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है।
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने एकदम सही कह रहे
2: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
3: नहीं बोलना।
2: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है
2: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके।
2: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. अयान मुखर्जी की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म की बैकिंग चली गई है यार. जियो स्टूडियोज ने फर्स्ट पार्ट को बैक किया था राइट, लेकिन अब दे हैव टेकन एन एग्जिट फ्रॉम द मूवी, जिसके बाद अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 के लिए एक नए स्टूडियो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं. वैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में नजर आएंगी, जो रणबीर कपूर के डबल रोल यानी देव वाले कैरेक्टर की पत्नी बनेंगी. बट फिलहाल तो दीपिका की टीम ने इस चीज को खारिज कर दिया है यार. बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड शूट कर लिया है जी. यस, समय रायना और भुवन बाम के साथ. माइंड यू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऑलरेडी अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म तुम्बाड 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसके पहले ही उन्होंने इस पर्टिकुलर लेटेंट एपिसोड की शूटिंग कर ली थी. भाई महाकाली से अपने कैरेक्टर के फियर्स लुक को शेयर किया है नन अदर देन अक्षय खन्ना ने, एंड आई एम मेस्मराइज्ड. महाकाली इज एन अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म जिसमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं अक्षय खन्ना. और इनका ये जो टीजर सा आया है, इट इज अ वॉर क्राई, बोले तो युद्ध का यलगार, जिसके साथ ही एक बार फिर से धर्म और अधर्म के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाएगा. और कसम से आपने अगर अक्षय खन्ना का ये अवतार अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि लियारे के बादशाह को आप एक बार के लिए भूल ही जाएंगे. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: लो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। आप अपने दिमाग के घोड़ों को किधर किधर दौड़ा रहे हो यार, जरा लगाम लगाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाकर अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोगों को कॉल करने पे वो तो फोन भी नहीं उठाते यार, आई गेस नंबर थोड़ा वियर्ड सा होता है, इसलिए आपको लगता है कि ये तो बस वो वाला कॉल होगा जिसको इग्नोर करना है। बट एनीवे, आज मैंने कॉल लगाया है नितिन जी को, एंड आई गॉट टू नो कि वो हैदराबाद हाल फिलहाल शिफ्ट हुए हैं बैंगलोर से, बट ओरिजिनली ये हमारे यहाँ से आते हैं। बोले तो बिहार पटना का कनेक्शन है भैया। तो नितिन जी, मिर्ची फिल्म ची बनने के लिए तैयार हैं आप?
2: यस श्योर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की फिल्म जिसमें 8 साल के बच्चे को डिसलेक्सिया होता है,
2: तारे जमीन पर।
0: हाँ जी, तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी के फेवरेट टीचर कौन है?
2: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो लड़की को खंडाला बुलाते हैं,
2: गुलाम।
0: यस, गुलाम में हीरोइन कौन है?
2: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें वो चोर बनती हैं,
2: बंटी एंड बबली।
0: हाँ जी, बंटी और बबली में पुलिस ऑफिसर कौन है?
2: पुलिस ऑफिसर अमिताभ बच्चन।
0: यस, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो सड़ू प्रिंसिपल बने हैं,
2: मोहब्बतें।
0: मोहब्बतें में किस हीरो को एक विधवा से प्यार हो जाता है?
2: जिमी शेरगिल।
0: हाँ जी, जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी,
2: एक ये गाना, कितने दफे दिल ने कहा, कितने दफे।
0: सही जा रहे हैं आप। बस काश कि मैं गाना गेस करने पे आपको ये नंबर दे देती, बट कोई नहीं, आपने इस गेम को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया है, इसलिए आप बने हैं हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो रेडियो के उस पार जो भी सुन रहा है फिलहाल, अगर आप इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आए हाय,
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
1: किसी के दिल से नहीं, बट मैं मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है। फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने शुरू किया था नितिन जी से बड़ी गॉड स्टार करे पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ है गीतांजलि। तो क्या तैयार है मैम?
4: जी बिल्कुल।
1: ओके, तो वो जहाँ जिस क्वेश्चन पे अटके थे, वो सवाल था जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी।
4: वो तनुवेड्स मनु।
1: क्या बात है, तनुवेड्स मनु में तनु से लव एट फर्स्ट साइट किसको होता है?
4: ये आर माधवन को।
1: जी, आर माधवन की फिल्म जिसमें वो हौसला, ईंधन और बदला सिखाते हैं।
4: धुरंधर द रिवेंज।
1: धुरंधर द रिवेंज में मेजर इकबाल कौन है?
4: अर्जुन रामपाल।
1: यस, अर्जुन रामपाल की फिल्म जिसमें वो शांति प्रिया को झूमर के नीचे मारते हैं।
4: ओम शांति ओम।
1: क्या बात, ओम शांति ओम में ओम के दोस्त कौन है?
4: श्रेयस तलपड़े।
1: वाह वाह, श्रेयस तलपड़े की फिल्म जिसमें वो स्टैमर करते हैं।
4: गोलमाल थ्री।
1: गोलमाल थ्री में माधव कौन है?
4: अर्शद वारसी।
1: यस, अर्शद वारसी किस फिल्म में बड़ा वाला डब्ल्यू ढूंढते हैं?
4: बड़ा वाला डब्ल्यू शायद उसमें धमाल में।
1: हाँ जी बिल्कुल सही, शायद नहीं बिल्कुल सही, धमाल में करप्ट पुलिस ऑफिसर कौन है?
4: संजय दत्त।
1: यस, संजय दत्त की फिल्म जिसमें वो अपनी माँ को 50 तोले की गोल्ड चेन फ्लॉन्ट करते हैं।
4: वास्तव।
1: क्या बात है, और आप भी वास्तव में फिल्मची हैं एकदम बड़ी वाली।
4: इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था।
1: बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के।
4: थैंक यू सो मच मैम।
1: ऑनेस्टली थैंक्स टू आप लोगों को बोलना चाहिए कि आप फुर्सत निकाल के मेरे डीएम्स में जाके अपना नंबर भेज देते हो यार। तो चलिए इसी बात पे डिक्लेयर करते हैं गीतांजलि जी को आज के हमारे शो की दूसरी
2: मिर्ची फिल्म जी।
1: तो अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी थोड़ा फोमो में है, देन वरी नॉट, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए एंड आई विल कॉल यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
2: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
3: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
2: दे नो हु दे आर,
3: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड।
1: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज आई विल ऑल्सो। ये यू आर लिस्निंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: हॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल, बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow Nu, टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: इनकी कहानियाँ एक अलग ही टच के साथ आती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाए, मैं हमारे हिंदी सिनेमा के कुछ फीमेल स्टोरी टेलर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनके जो ट्रेडमार्क्स है ना, दे स्टैंड आउट इन ऑल द क्लटर दैट वी हैव इन इंडियन सिनेमा। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फीमेल स्टोरी टेलर्स की बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अन्विता दत्त गुप्तन। भाई मोहतरमा एक्सप्लोर करती हैं द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड एलाइज। सो एलाइज वो इंसान होता है जो आपकी मदद करने, आपकी सपोर्ट में खड़ा होता है व्हेन नोबडी इज बाय योर साइड। एंड इनकी दो फिल्में बुलबुल और कला ऐसे ही एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करती हैं। इनकी कहानियां एक औरत के ट्रॉमास की बात करती हैं, बेसिकली जो इनके कैरेक्टर्स इनहेरिट करती हैं फ्रॉम देयर फैमिलीज। अगर हम बात करें इनकी दोनों फिल्में कला एंड बुलबुल की, देन दे डील विद पेट्रियार्की एंड रिवील करते हैं कि एक मैंस वर्ल्ड में औरत होना टेक्स मोर देन जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। इन मोहतरमा की फिल्में नहीं देखी हैं तो अपने वॉच लिस्ट में जरूर से जरूर ऐड करना। बाकी और भी चार ऐसे ही फीमेल स्टोरी टेलर्स की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: ഞാൻ മമ്മൂട്ടി. റേഡിയോ മിർച്ചയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.
1: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ. आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा.
1: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना. अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर. मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको.
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
1: 7,500 रुपए का.
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे.
1: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए.
2: किस चीज की फीस?
1: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए.
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
1: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ. 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके.
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
1: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है. आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं. उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है. 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं. 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है. और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना. 7,500 रुपए आपके बचते हैं.
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
1: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे.
2: आप रखो
1: यार,
2: यहाँ पर पब्लिक को यार.
1: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी. मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से. आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए. हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से. सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है. हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए संदीप.
2: हाँ बोलो बोलो.
0: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट. 4 balls लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: इंसान का अपना एक ट्रेडमार्क होना चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जैसे मेरा ट्रेडमार्क है फिल्में, क्योंकि ये लड़की बड़ी फिल्मी है यार। सो आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही ट्रेडमार्क्स की बात कर रही हूँ, बट स्पेसिफिकली ऑफ आर फीमेल स्टोरी टेलर्स। उन्होंने किस तरीके से अपनी कहानियां बयां की हैं उसकी चर्चा हो रही है। सो इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी टेलर अन्विता दत्त गुप्तन। अब नंबर दो पे बात करते हैं इंग्लिश विंग्लिश एंड डियर जिंदगी फेम स्टोरी टेलर गौरी शिंदे। सो इनका बेसिक ट्रेट है फाइंडिंग पर्सनल विक्ट्रीज। इनकी कहानियां सिंपल लोगों पे फोकस करती हैं जो रिलेटेबल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड इवेंचुअली ओवरकम देम। इनके नैरेटिव का कोर होता है हार्ट ब्रेक, होम मेकर्स एंड द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ। अब डियर जिंदगी की प्रोटैगनिस्ट कायरा हो या फिर इंग्लिश विंग्लिश से शशि का कैरेक्टर, ये ग्रैंड हर्डल्स ओवरकम नहीं करते जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत लिया या कुछ। Instead, they battle for their own identity. Moving on, लिस्ट में नंबर तीन पे बात करना चाहूंगी सोनाली बोस के बारे में, जिनका ट्रेडमार्क है पोर्ट्रेट्स ऑफ फ्रीडम। अब इनकी मूवीज ही देख लो, मार्गरेट विद अ स्ट्रॉ, द स्काई इज पिंक, अमू। अपने फिल्मों के डाइवर्स लेंस से ये मोहतरमा फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे करती हैं। अब उनकी फिल्म रात की रानी की ही बात कर लें, उसमें शी एक्सप्लोर्स द पर्सनल विक्ट्री ऑफ अ वुमन नेविगेटिंग लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड्स डिपार्चर। वहीं द स्काई इज पिंक में वो सेलिब्रेट करती हैं द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ अ मदर, अ वाइफ एंड एन इंडिविजुअल अमिड्स चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वेल, ऐसी ही दो और फीमेल स्टोरी टेलर्स की बातें बाकी हैं इन माय लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इनकी पहचान है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय। मैं अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फीमेल स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी पहचान की बात कर रही हूँ, उनकी कहानियों का जो ट्रेडमार्क है उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट अन्विता दत्त गुप्तन, नंबर दो पे हमने बात की गौरी शिंदे के बारे में, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट सोनाली बोस, अब बारी है नंबर चार पे टॉक अबाउट जोया अख्तर। भाई इनका ट्रेडमार्क है अर्बन मॉडर्न वुमनहुड। जिस तरीके से जोया फीमेल कैरेक्टर्स को समझती है, दैट मेक्स हर स्टोरीज रिलेटेबल। वो मेड इन हेवन से तारा हो जो गोल्ड डिगर के स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, एंड बाय द एंड यू फाइंड योरसेल्फ रूटिंग फॉर हर, राइट? या फिर दिल धड़कने दो से आयशा का कैरेक्टर हो दैट हाइलाइट्स कि रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास उनको भी जेंडर बायस फेस करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग, राइट? चलो मूविंग ऑन, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कोंकणा सेन शर्मा। भाई ये महिला जिस लेवल की एक्ट्रेस है उसी लेवल की स्टोरी टेलर भी। सो बेसिकली इनकी कहानियां फीमेल डिजायर्स, मेंटल हेल्थ और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। अब वो दो औरतों के अनस्पोकन डिजायर की बात हो फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस इन द शॉर्ट फिल्म मिरर, या फिर वो आदमी जिसको बटरफ्लाइज और किताबें पढ़ना पसंद हो इन द फिल्म डेथ ऑफ द गूंज। She brings out human emotions with remarkable nuances. And that is the reason, my friend, I just love her. Well, meri is list mein agar aap bhi kuch female writers ka naam add karna chaho, then feel free to do that. Connect with me on my Facebook and Instagram. I'm there with the name MIRCHISHRUTI. That is Mirchi Shruti. Meanwhile, stay tuned to Mirchi. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अयान मुखर्जी की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म की बैकिंग चली गई है यार। जियो स्टूडियोज ने फर्स्ट पार्ट को बैक किया था राइट, लेकिन अब दे हैव टेकन एन एग्जिट फ्रॉम द मूवी, जिसके बाद अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 के लिए एक नए स्टूडियो पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में नजर आएंगी, जो रणबीर कपूर के डबल रोल यानी देव वाले कैरेक्टर की पत्नी बनेंगी। बट फिलहाल तो दीपिका की टीम ने इस चीज को खारिज कर दिया है यार। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड शूट कर लिया है जी, यस, समय रायना और भुवन बाम के साथ। माइंड यू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऑलरेडी अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म तुम्बाड़ 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसके पहले ही उन्होंने इस पर्टिकुलर लेटेंट एपिसोड की शूटिंग कर ली थी। भाई महाकाली से अपने कैरेक्टर के फियर्स लुक को शेयर किया है नन अदर देन अक्षय खन्ना ने, एंड आई एम मेस्मराइज्ड। महाकाली इज एन अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म जिसमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं अक्षय खन्ना, और इनका ये जो टीजर सा आया है, इट इज अ वॉर क्राई, बोले तो युद्ध का यलगार, जिसके साथ ही एक बार फिर से धर्म और अधर्म के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाएगा। और कसम से आपने अगर अक्षय खन्ना का ये अवतार अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि लियारे के बादशाह को आप एक बार के लिए भूल ही जाएंगे। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So, kya bolu aapko?
1: Sorry, Razdan, aapne koi jawab nahi diya. Alia ya Shaheen, kisi ka naam nahi liya. Agli baar jab aap aayenge, hum phir se ye sawal puchhenge. You are listening to Mirchi. It's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
6: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
4: उसे सब पता है
7: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: पास।
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल, लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल, बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्च लेके आ रहा है पार्टी सुपर कूल। सेट योर ड्रीम्स, सेट योर गोल्स, कॉन्फिडेंस का टूल, अब टाइम आ गया है सबको जाना होगा स्कूल, सो ज्वाइन करो ये पार्टी, ये होगी सुपर कूल, cuz it's time for Mirchi back to school, yeah. Cuz it's time for Mirchi back to school.
2: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
3: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tesi Motors, Airport Road, Doha.
4: Mirchi ghadi mein bajne wale hain teen.
5: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical

टेलीविजन सीरियल के एक एपिसोड की अडेप्टेशन है ये फिल्म। माहिवे माहिवे, और एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ अबाउट द फिल्म हाईवे। हाईवे, यस, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, और इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणदीप हुडा लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। सो अबाउट द अडेप्टेशन वाली कहानी, मूवी जो है ना वो एक अडेप्टेशन है फ्रॉम द टेलीविजन एपिसोड ऑफ अ सीरियल जिसका नाम था रिश्ते। ये एक एंथोलॉजी सीरियल था जो जी टीवी पे 1990s में एयर किया करता था। एंड माइंड यू, जिस एपिसोड का अडेप्टेशन है ये फिल्म, उस एपिसोड को इम्तियाज अली ने ही लिखा और डायरेक्ट भी किया था। इंटरेस्टिंग, राइट? वैसे कहानी यहां तक ही नहीं रुकती। सो रणदीप हुडा के कैरेक्टर को फिल्म में आलिया भट्ट के कैरेक्टर से एक डिस्टेंस फील करवाना था, और उस चीज को इतने सिंसियरली लिया उन्होंने दैट रणदीप ने आलिया से फिल्म के सेट पे 25 दिनों तक बात ही नहीं किया था। तभी मैं कहती हूँ यार, 70mm पे जो फिल्म हम देखने जाते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: നമസ്കാരം. ഞാന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും വളർന്ന യേശുദാസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാസേട്ടൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം റേഡിയോ മിർച്ചിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഓണത്തിന്റെ ഈ ആശംസകൾ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അർപ്പിക്കുകയാണ്.
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: विवेक जी.
1: हाँ जी बताइए.
2: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
1: या ऑफ कोर्स.
2: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो.
2: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
1: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
2: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
2: थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे.
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार.
2: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की.
2: अच्छा अच्छा.
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
2: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: हाँ
2: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत. आप कह रहे हो आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: इन दूसरी प्रजाति वालों से ना मैं 10 हाथ की दूरी मेंटेन करके रखती हूँ।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिस्कस करना चाहती हूँ अपने पास पेट रखने वाले लोगों की कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अपने आप को पेट ओनर्स नहीं पेट पेरेंट्स मानते हैं, क्योंकि ये अपने पेट को ना अपने बच्चे के जैसे, अपने जिगर के टुकड़े के जैसे संभाल के संजो के रखते हैं। वो अपने पास उस पेट को सिर्फ एक शोपीस बनाकर नहीं लाते, एक फैमिली मेंबर बना के लाते हैं, और उसको एक कोने में पड़े नहीं रहने देते कि भाई बस खाना पीना देख ले, नंबर वन नंबर टू देख ले, उसके बाद तो मेरे से कोई मतलब नहीं है तेरा। नहीं, ऐसा सीन नहीं होता है उनके साथ। दे मेक श्योर कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, खेलना कूदना करें, उनका ध्यान रखें, उनसे बातचीत करें, एंड व्हाट नॉट मैन, जो आप एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड के साथ करते हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर वेज में ये लोग अपने पेट्स को रखते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, आय हाय, बड़ा बुरा लगता है इनके बारे में सोचकर यार, क्योंकि इनकी मानसिकता मुझे समझ नहीं आ पाती। ये वो लोग हैं जो पेट ओनर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये नॉर्मली अपने क्लोजेट में कोई लग्जरी ब्रांड रखते हैं और उसको जिस तरीके से फ्लॉन्ट करते हैं ना लोगों के बीच में, ठीक वैसे ही ये अपने पेट्स के साथ भी करते हैं। खरीद कर लेकर आ गए हैं और बस बच्चा शोपीस बना पड़ा है। बस इसी वजह से मैं इन दूसरी कैटेगरी वालों से 10 हाथ की दूरी मेंटेन करके रखती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Love isn't about perfect timing.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून दिन हो आप और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाला मिल ही जाता है यार। और आज जिनकी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो आई एम श्योर आपके भी फेवरेट्स रहे हैं। विशाल भारद्वाज दी ओजी डायरेक्टर एंड उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज, जिनकी आवाज के हम सब कायल है। सो बेसिकली द कहानी इज की रेखा जी को म्यूजिशियन बनना था, सिंगर बनना था, लेकिन विशाल भारद्वाज को फिल्मों में नहीं आना था। लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ को ऐसा करना था, इस दुनिया में आना था, तो वो भी इंडस्ट्री में घुसे और बहुत जल्द बड़े भी बन गए। बट रेखा जी का करियर नहीं चला। उनको प्यार तो मिल गया लेकिन करियर नहीं मिला, एंड शी गॉट डिप्रेस्ड इन अ वे और वो ओशो के पास चली गई अपनी शादी छोड़ के। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में कोई दूसरा मर्द होता तो वो शायद से शादी को ही तोड़ देता, बट विशाल भारद्वाज ने एक साल तक रेखा भारद्वाज का इंतजार किया। बट जब वो लौट कर नहीं आई ना, देन ही हिमसेल्फ वेंट डाउन टू ओशो। उसके कुछ टाइम के बाद विशाल भारद्वाज ने फिल्म बनाई ओमकारा, उसमें रेखा भारद्वाज की आवाज थी फॉर द सॉन्ग नमक इश्क का, एंड रेस्ट वी ऑल नो इज हिस्ट्री। तो या इट वॉज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी जिसमें पत्नी कई बार जाना चाहती रही, बट विशाल भारद्वाज का अपनी वाइफ के लिए जो प्यार था वो इतना खूबसूरत था दैट इट चेंज्ड एवरीथिंग अराउंड देम। तभी मैंने कहा लव इजंट ऑलवेज अबाउट परफेक्ट टाइमिंग। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड।

0: इस उल्टी पुल्टी जिंदगी में जरा फिल्मी उल्टा पुल्टा तड़का मारे।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप और हर रोज की बात है, इट्स टाइम टू फाइंड द पर्सन जो मेरे इस मिर्ची उल्टा पुल्टा गेम को कंप्लीट कर पाए। सो इस गेम में मैं आपको फिल्म के नाम उल्टा पुल्टा करके बताती हूँ और आपको सही नाम गेस करना होता है। एंड लाइक यू नो द ड्रिल, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। सो बैंगलोर से वर्षा जी ने कॉल करके मुझे स्पेसिफिकली इसी गेम के लिए रिक्वेस्ट किया था। सो हियर वी आर विद हर। तैयार है मैम? आपका पहला सवाल है दिमाग।
3: दिल।
0: क्या बात है, मतलब आपको गेम का कॉन्टेक्स्ट पता है। नाइस, आई लाइक इट। बर्फ का पथ।
3: बर्फ का पथ। अग्निपथ।
0: क्या बात है। बाय सिस्टर।
3: हेलो ब्रदर।
0: यस। बदसूरत।
3: खूबसूरत।
0: यस। चंद्रवंशम।
3: सूर्यवंशम।
0: क्या बात है। दूर।
3: पास।
0: हाँ, पास का ही उर्दू वर्ड।
3: करीब।
0: यस इट इज। ओरिजिनल।
3: ओरिजिनल डुप्लीकेट।
0: यस। नो एम्प्लॉय।
3: यस बॉस।
0: क्या बात है। सजनी चली मायका।
3: साजन चले ससुराल।
0: जी बिल्कुल। साथ हम साथ तुम।
3: अकेले हम अकेले तुम।
0: यस इट इज। रानी बेटी।
3: राजा बाबू।
0: यस इट इज। अंदाज सबका सबका।
3: अंदाज अपना अपना।
0: चुप राधा चुप।
3: बोल राधा बोल।
0: और आपने भी जो बोला है कह ही ढा दिया है, क्या ही खेला है ये गेम।
3: थैंक यू सो मच।
0: मजा आया आपको? हाउ डू यू फील?
3: ओह बहुत मजा आया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल एक्चुअली, बट या थैंक यू
0: भाई। थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि भाई मेरे कहने पे आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजते हो एंड दैट एफर्ट इज एवरीथिंग फॉर मी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: എല്ലാവർക്കും ഓണം ആശംസകൾ. ഓണം കി സബ്കോ ഢേർ സാരി ബധായാ മബ്രൂക് ഹബീബി ഓണം മബ്രൂക്. ഓർ ആജ് ഗുലാബി സാഡി നീ ആജ് തോ വോ ഗോൾഡൻ ബോർഡർ വാലി സാഡി ദിഖ് രഹി ഹോഗി. ശാം കേ 4:02 സേ സാദാ.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अच्छा मस्त बोलो गौरव आपके साथ है तो फिकर नॉट दोस्तों, दुनिया भर की बातें हम यही तो लेकर हैं आते हैं और आपके कानों में अच्छे अच्छे गाने हम भिजवाते हैं. इन सब के बीच आज ओणम आश्रम सगल की बात करेंगे, जहां पर ओणम संध्या खाने के बाद सच बता रहे हैं मुंह में बार बार पानी में पानी जा रहा, नहीं तो नींद आएगी, एकदम सो जाएंगे. इतना जबरदस्त मटर राइस के साथ सारी अलग अलग नाना प्रकार के जो व्यंजन होते हैं ओणम संध्या में वो खाएं. इन सब के बीच बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कतर के कोने कोने में आज ओणम की धूम दिखाई दे रही है. एंड भाई रेस्टोरेंट से लेकर आपके बड़े बड़े हाइपर मार्केट तक सब जगह ओणम की ये स्पेशल सद्या की जो बात है ना वो अलग ही है, निराली है. पायसम से लेकर अवियल तक, अवियल से लेकर अलग अलग नाना प्रकार, इंजी पुली वाली चटनी, फलाना सांबर, राइस, मटर राइस, बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ. एंजॉय करते रहिए. आज हम भी गानों का ओणम यहाँ मिर्ची पर लेकर आए. अगला गाना बैंगल, संजू राठौड़ एक बार फिर से आ गए मिर्ची पे. It's hard. I'm not

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया तो तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा है?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: मन कितना भी उड़ जाए लेकिन बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वार्निंग दी है, इसको हल्के मत लीजिए नहीं तो लंबा फाइन लगेगा।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस मस्ट फॉलो गौरव, आपको यहाँ बताना चाहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सभी लोगों से कहा है कि विदाउट अ लाइसेंस तो अगर आप ड्राइव करते पकड़े गए हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, इम्प्रिजनमेंट से लेकर हैवी फाइंस तक लगेंगे। ट्रैफिक वायलेशन का सबसे बड़ा ये समझ लीजिए आप एग्जांपल सेट करेंगे अगर आप बिना लाइसेंस के कतर में गाड़ी चला रहे हैं। यस ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज अ ट्रैफिक वायलेशन, और क्योंकि ये दूसरे रोड से यूजर्स की सेफ्टी को भी एक तरह से खतरा पैदा करता है, इसलिए आपको आर्टिकल 94 ऑफ द ट्रैफिक लॉ के अकॉर्डिंग फाइन मिलेगा। पहले तो इम्प्रिजनमेंट, कम से कम 1 महीने की जेल, और हो सकता है ये 3 साल तक जाए। हाँ जी, और इसके अलावा 10,000 to 50,000 कतरी रियाल का फाइन भी लग सकता है। यस, आपको बताना चाहता हूँ खमसी नल्फ का फाइन यानी 50,000 कतरी रियाल ये जेब से चले जाएंगे अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी के मजे उड़ाएंगे। तो भैया अगर इतना ही शौक है तो अच्छा सा कोर्स लो और फटाफट से लाइसेंस ले लो, वरना गाड़ी और लाइसेंस लेने में जितना खर्चा करोगे उससे ज्यादा खर्चा फाइन में दे दोगे। समझदार को इशारा काफी है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो भैया बहुत अलर्ट हो जाओ, अब आप बचोगे नहीं। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: कि हो ना जाए प्यार। भैया प्यार करो, बर्बाद मत करो। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो वीकेंड से बहुत प्यार करता है और लेकर आता है वीकेंड पे बहुत सारी वाइब, क्या खास तैयारियां चल रही हैं हमारे कतर में?
1: बहुत सारी हैं, क्या बताऊं तुम्हें गौरव। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से इंडोर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं, और जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो आजकल मसला चल रहा है ना, दैट इज कि कौन किसका दिमाग पढ़ सकता है। मेरे घर में तो आजकल यही चल रहा है कि मुझे मिलना है उससे और जानना है कि मेरे दिमाग।
0: अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आपस में बैठ के बोल रहे हैं कि कैसे कर सकती है यार, ये माइंड रीडिंग इज नॉट इजी, कैसे हो सकता है, ये जादू तो नहीं है, ये जादू से ऊपर है।
1: एग्जैक्टली, मतलब देखो मैं ना बहुत सारी वीडियोस देख चुकी हूँ, रील्स देख चुकी हूँ इनकी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं जाके ना खुद जाके फिजिकली सामने देखूं और उनको महसूस करूं कि वो कैसे करती है ये।
0: यार इनफैक्ट आई वाज वाचिंग हर शो ऑन टीवी, नेटफ्लिक्स पर भी आया हुआ है, मैंने देखा यार बंदी सामने वाले से पूछ रही है कि तुम्हें इनकी कौन सी फिल्म पसंद है, और जैसे आप मुंडा भाई MBBS लिख रहे हो, आई न्यू दिस वाज यू, तो सबको लगा ये तो कॉमन है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। फिर बोलती ले बेटा पिक्चर का नाम भी देख ले,
1: और सबके पीछे यही लिखा था कि ही लव्स मुंडा भाई MBBS, सबके पीछे।
0: अगर वो चाहती तो वो तीन नाम अलग अलग कर सकती थी,
1: डेफिनेटली, और सब में यही लिख सकती थी या ही लव्स मुंडा
0: भाई। दिस गर्ल इज ऑसम, एंड गेट योर बुक टिकट्स योर नाउ राइट नाउ, क्योंकि 30 कतरी रियाल का SCT पर ऑफर चल रहा है। यस, ये कैशबैक ऑफर का फायदा उठा लो, SCT स्नूनू पर आपको मिल रहा है। जितनी जल्दी हो सके हर कैटेगरी की टिकट्स बुक करने पर आपको ये 30 कतरी रियाल का प्राइज मनी मिल रहा है। जाओ ये कैशबैक लो, ये बाकी चीजों में काम आ जाएगा, और बाकी हम तो सुहानी के साथ अपना दिमाग लगाएंगे ही, हमें कुछ तो सीखना है, और उसके बाद हम कईयों का दिमाग पढ़ेंगे, जैसे कि ईशा का।
1: इससे कुछ दिमाग नहीं है, सब टाइटल्स नहीं आएंगे तुम्हें दिखने में कि क्या दिमाग में चल रहा है सब टाइटल्स के साथ। ओ माय गॉड, मैनुअल नहीं है इसको।
0: यार ये आसान तो नहीं है, पर चलिए इस पूरे एक्सपीरियंस को एक बार तो बनता है लेना। द मेंटली सुहानी शो लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय IPA 89.6 मिर्ची वन।
1: इट्स हॉट।

0: दिल्ली अनिरुद्ध और जोनिता गांधी की आवाज में गाना सुनाया किसने? लेकिन मौसम का हाल सुनाने से पहले ये जरूर कहेंगे कि अभी अगले कुछ दिनों तक और राहत नहीं है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: मस्त बोला गौरव, इतना ही कहना चाहेगा। दिन का मैक्सिमम तापमान आज एक बार फिर से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है। यस, 43 डिग्री जहां मैक्सिमम पहुंचा वहीं मिनिमम अराउंड 31 है। लेकिन जिस दिन ये 31 से 29, 28, 26 होने लगेगा, चीजें बेहतर सी तरफ बढ़ेंगी। बट राइट नाउ इतना ही कहना चाहता हूं, पानी पीते रहिए और कोसते रहिए सूरज चाचू, क्योंकि गर्मी अभी दूर दूर तक जाने का नाम नहीं लेगी और अगले 30 दिनों में टेम्परेचर धीरे धीरे जरूर नीचे जाना लगेगा। 89.6 मीटर जीवन पर हम, लेकिन वो लोग हैं जो इस गर्मी में भी गर्मा गर्म करक पीने के शौकीन हैं, तभी तो हम कतार में रहते हैं। दोस्त आइए इस बात पे विसल बजा दें। मंच निंदी कौर रफ्तार के आवाज में गाना मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: अपन 5:03 पे होगा जल्दी खत्म।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: हाँ जी, मैं स्मॉल गौरव आपके साथ है। इल्ला वरकम, आज आप सबको ओणम आश्रम सकल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खाने पीने से लेकर बहुत सारे अलग अलग कलरफुल रिचुअल्स हैं इसके, एंड सबसे खास बात होती है कि इसको लेकर जो एक्साइटमेंट सबके अंदर होता है ना, वो तीन तीन चार चार महीने तक कंटिन्यू हो रहा होता है। और हमारे कतर में तो हमें लगता है, जहां तक पूरी उम्मीद है, अभी और कई दिन तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। वैसे फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव आपको बस इतना ही कहना चाहता है, बारी आ गई है दोस्तों, शाम होते ही खेलने की, वो जिसे कहते हैं आवाज की आवाज। आपको ध्यान से सुनकर बतानी है कि ये किस एक्ट्रेस की आवाज है।
2: I'm used to Mumbai, I think now. I like being busy and yeah. Mumbai is such a fast city. I mean, it's like you don't have time to breathe or time to see anything.
3: Yeah.
2: Bareilly was my schooling. I've done my schooling from
0: Bareilly. I've done my schooling from Bareilly. ये कौन है, एक बार फिर ध्यान से सुनिए।
2: I'm used to Mumbai, I think now. I like being busy and yeah. Mumbai is such a fast city. I mean, it's like you don't have time to breathe or time to see anything.
3: Yeah.
2: Bareilly was my schooling. I've done my schooling from
0: Bareilly. हां जी, ये कौन है बरेली की वो बर्फी जिसकी आवाज आप यहाँ सुन रहे हैं, एक बार फिर ध्यान से सुनिए और बताइए कौन सी एक्ट्रेस है ये।
2: I'm used to Mumbai, I think now. I like being busy and yeah. Mumbai is such a fast city. I mean, it's like you don't have time to breathe or time to see anything.
3: Yeah.
2: Bareilly was my schooling. I've done my schooling from Bareilly.
0: चलो जी, इससे ज्यादा नहीं सुना सकता, इतने में तो आप चार बार पकड़ लेने चाहिए थे। फिलहाल 5001896 ये नंबर है जिसपे आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजना है और कहना है, गौरव मेरे हिसाब से ये जो आपने सवाल पूछा है ये फना हीरोइन है। जितनी जल्दी हो सके 5001896 पर आपको मस्मौला गौरव को बताना है। इतना ही कहना चाहूंगा, शानदार अदाकारा है, उससे भी ज्यादा गजब की खूबसूरत है, एंड ये कौन है इसके लिए इंतजार कीजिए और मिर्ची सुनते रहिए, अपनी तरफ से गेसेस कीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी भेजो 5001896, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Ne vjet bala burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: आहिस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तब क्यों आवाजें आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा था इसमें, इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इसका बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ, देश मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स. जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स. पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: प्रॉपर पटोला। ये नमस्ते इंग्लैंड का गाना दिलजीत दोसांझ एंड उनके साथ ही साथ बादशाह की जोड़ी एंड साथ में आस्था गिल। गाना सुनाया किसने, जिसने जीता आपका दिल? लेकिन फिलहाल तो आपके कॉन्टेस्ट जीतने की बारी है, जहां पर हम खेल रहे हैं इस घंटे
1: पहचान कौन।
0: और पहचान कौन में आज की आवाज कुछ यूं है।
2: I'm used to Mumbai, I think now. I like being busy and yeah. Mumbai is such a fast city. I mean, it's like you don't have time to breathe or time to see anything. Yeah. Bareilly was my schooling.
0: I've done my schooling from Bareilly and pucha tha jawab batane ke liye aa gaye hain.
3: Actress is Priyanka Chopra.
4: Good evening, Gaurav. How are you? कैसे हैं आप? ठीक हैं?
0: ठीक हैं.
4: Yusuf Itim again. ये आवाज कृति सनन की लग रही है। I'm not sure, but just guessing. कृति सनन. Okay. Thank you. Bye bye.
5: जो सवाल आपने पूछा था इसका सही जवाब होगा मेरे ख्याल से दिशा पटानी।
0: दिशा पटानी, क्या
5: मैं सही हूँ? गौरव बताइए मुझे। सितेंदु हियर।
6: गुड इवनिंग मेरे मस्तमौला भाई, गौरव भाई कैसे हो आप?
0: बढ़िया भाई, बढ़िया।
6: रेगुलर इसमें लाल मोहम्मद खान
0: जी, लाल भाई।
6: और जी सब बेहतरीन है, आपकी फैमिली और
0: जी,
6: सब लोग
0: जी, सब
6: और गर्मी को अलविदा कहने की वक्त आ गई है।
0: जी, जी।
6: जो आपने आज सवाल पूछा पहचान कौन में, मेरे ख्याल से ये दिशा पटानी जी का आवाज है। वो बरेली से बिलोंग भी करती है, अभी मुंबई में रहती है, ज्यादातर तो गोवा में रहती है फिल्म से शूटिंग के लिए, क्योंकि सारे मूवीज तो उनका शूटिंग गोवा में ही होता है। दिस इज लाल मोहम्मद खान, रेडियो मिर्ची।
0: इट्स हॉट सर। एंड ऐसे नहीं, अभी बहुत सारे और भी लोग हैं, बताएं।
7: यामी गौतम।
8: हाय सर, मेरा नाम डंडा पानी शर्मा है, मैं नेपाल से।
0: जी,
8: मेरा दोस्त ऑल्डो मैकेनिकल इंजीनियर, उसका आज बर्थडे है।
0: अच्छा, अच्छा।
8: कर दीजिए। और जो आप क्वेश्चन किए है उसका आंसर है दिशा पटानी।
0: पहले तो जितने लोगों ने दिशा पटानी कहा सबके लिए तालियां हो जाए। ये वो लोग हैं जो रिश्तेदारों की आवाज भले ही भूल जाए लेकिन दिशा पटानी की आवाज नहीं भूल रहे। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं आप सब है। यस, द राइट आंसर इज दिशा पटानी। लाल मोहम्मद खान साहब, सितेंदु जी, आप सब सही हैं। बहुत सारे लोगों ने आज गलत जवाब भी दिए, पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल्डो का बर्थडे, ऑल्डो भाई, क्योंकि दंड पानी भाई ने कहा है आपके बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हबीबी मबरूक, अल्फ अल्फ मबरूक फॉर योर यौमे पैदाइश। आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, ऑल्डो टाइप तरक्की करते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल्डो भाई, क्या नाम है आपका, मजा आ गया, ब्रांडेड नाम है मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 6 decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: पिछले सात दिनों में ये सब है खोया।
1: अभी इतना डिटेल लगते भाई, हम तो अपने पिछले 7 सालों में कितना कुछ खो दिए, लेकिन यही सोच कर कि ऊपर वाला आगे और देगा, भूल गया यार। और ऐसे ही चीजों को भूल जाने में ही हमारी आपकी भलाई है, दिल पे लेने का नहीं तो सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। मस्त मौला गौरव आपके साथ, आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड ये बता दें कि वेस्ट वॉक अल रयान में बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल और इंटरैक्टिव चल रहा है। जी, हम आपको बता दें इस वीकेंड ये प्लान हो गया है, जहां पर प्लांटिंग, ड्राइंग, कलरिंग एंड रिसाइकलिंग की कला जो है वो आपके बच्चों को सिखाई जाएगी, क्योंकि हमारे कतर में वेस्ट वॉक अल रयान में बैक टू स्कूल जो है वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहां बच्चे सीखेंगे रिसाइकलिंग, जो सबसे जरूरी है, वरना हमारे दौर में बात अलग थी भाई। हमारे वहां रिसाइकलिंग का मतलब मम्मी हमारे फटी जीन्स को लेके झोले बना देती थी और हम बाहर से प्लास्टिक की बॉटल लाते थे तो उसमें अलग अलग घर के सामान भर जाते थे। राशन भरने के लिए इन्हीं प्लास्टिक डब्बों का इस्तेमाल होता रहा और इसी को कहते हैं रीयूज, रिसाइकिल करना। हाँ जी, इसी उम्मीद से कि अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को ये सब चीजें सिखाएंगे तो वो भी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगी। जरूर इसका हिस्सा बनिए वेस्ट वॉक अल रयान में, 29th ऑफ अगस्त तक ये चलेगा, रोज शाम 5 से रात 10 बजे तक। एंड इसका हिस्सा बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस जाइए, एंजॉय कीजिए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि इस बार जब स्कूल जा रहे हो तो मन लगा के रखना। फिलहाल तो मेहंदी लगा के रखने की बारी आई है। लता मंगेशकर, उदित नारायण जी के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट।

थोड़ा सा पैसा दे दो। मांग नहीं रहा हूँ, हाँ मैं इतना इंटरनेशनल नहीं हूँ, आपसे मांगू, बस इतना ही कह रहा हूँ कि इस गाने मेरी ये लाइन कितनी सटीक बैठती है। फिलहाल अगर ज्यादा है तो थोड़ा दे भी सकते हो। राइट नाउ की बात करें, एक कसवी रियाल के बदले मिलने वाली भारतीय मुद्रा 26 रुपए 21 पैसे हो गए, 26.21 INR। वहीं एक कसवी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.12। अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपीज की, जनाब वाहिद कसवी रियाल के बदले आपने जो पा लेना है वो है 76.19 पाकिस्तान की रुपए। हाँ जी, पाकिस्तान रुपीज 76.19 अगेन 1 कसवी रियाल। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छा जो 1 कसवी रियाल के बदले 41.7 चौका भाल चार रेटर भाई। हाँ जी, 41.76 को नेपाली पीस का रेट चढ़ाई। अगर घर भेजना लाई तो हाजू राइट सही टाइम छो। अगर इसके बाद बांधो बांग्लादेशी टाका का बात करेगा दादा, एकटा कतरी रियाल के बदले 33.79 तो 33.79 इटर रेट आचे तो बांग्लादेशी टाका ठीक है, तो मस्त मोलो गौरव के साथ रहेगा, साफ पता लगता रहेगा। बस यही बने रहिए, मिर्ची सुनते रहिए और जल्द ही 30 तारीख को लाइए ताकि हमारी सैलरी क्रेडिट हो जाए। मिर्ची

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: आंखों से तूने देवनेगी पलक मुछाल की आवाज में गाना सुनाया किसने? और मिर्ची घड़ी में शाम के 6:07 के करीब का टाइम
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, ओणम आज चल रहा है। ओणम संध्या में लोग अलग अलग तरह से थाली खा रहे हैं, लेकिन मस्त मौला गौरव आपसे कह रहा है कि आज आप हमसे ओणम से रिलेटेड एक सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी, ओणम से रिलेटेड सवाल आप यही बताएंगे कि किंग महा जो दिखते हैं हम लोगों को, एक बड़े से किंग छतरी लिए वो ओणम में सबको बहुत सारा रंग दिखाते हैं। हमारे कतर के भी अलग अलग होटल्स वाले इनकी फोटो लगाते हैं। हाँ जी, इनका नाम क्या है? वो किंग, वो राजा जो छतरी पकड़े आपको अक्सर दिखाई देते हैं, ओणम संध्या का एक सबसे बड़ा पिक्चर बनते हैं, उनका क्या नाम होता है? सब लोग खा ले रहे हो, लेकिन उनका नाम याद है? हैं जी, जल्दी बताओ वो कौन है जिनको आप ओणम में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मानते हो? यस, एक बड़ा सा लकड़ी का छाता और मुकुट के साथ ये राजा साहब नजर आते हैं। आपको बताना है ये कौन है। यस, यानी कि ये जो राजा है इनका पूरा नाम क्या है, यही आपको बताना है 5000196 पर, क्योंकि ओणम की एक पहचान जहां ओणम संध्या है उसी के साथ दूसरी पहचान ये राजा साहेब है। आज अंशु ने सुबह सुबह इनके लिए कहानी बताई है। जल्दी बताओ 5000196 पर कि वो कौन है जो ओणम के साथ एक इंपॉर्टेंट तस्वीर बनते हैं और ज्यादातर जगहों पर नजर आते हैं, मुकुट उकुट पहने, शीश पे अपने मुकुट लगाए एंड एक बड़ा सा छाता लिए रहते हैं लकड़ी वाला। 89.6 मिर्ची वन पर अगर आपको बताया तो 5000196 पर जल्दी बता दो। मस्त बोलो गौरव आपके साथ मिर्ची इट्स हॉट।

0: Kahve Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें तो रख लो, बीच में रख लो हमें तो यार।
2: अरे यार
1: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम है लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
2: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 runs टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: सुनिधि चौहान की आवाज में आंख गाना खत्म हुआ और मुझे गंगा जल का डायलॉग याद आ गया। आंख दिखाता है फिलहाल तो आपके साथ मस्त मौला गौरव। और आंख नहीं, इनका तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। मैंने पूछा था ओनम संध्या जितनी इम्पोर्टेंट है उतने इम्पोर्टेंट एक करेक्टर है जो बड़ा सा लकड़ी वाला छाता लेकर सर पर मुकुट लगाए हमें हर जगह नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बताओ ये कौन है?
1: गौरव भाई दिस साइड राजकुमार। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना ओनम में वो जो छाता लेकर के एक कैरेक्टर को, तो उनका नाम था राजा बली।
2: नमस्कार गौरव भाई, मैं इलाइट इंटरनेशनल से राघवेंद्र बोल रहा हूँ।
0: हाँ भाई,
2: ये राजा का नाम महाबली है, राजा महाबली।
3: राजा बली, राजा बली है उनका नाम। मेरा नाम अजय पाटिल है, उनका नाम है राजा बली।
4: द किंग एसोसिएटेड विद ओनम इज किंग महाबली।
0: Yes, the right answer is King Mahabali, जिनको आप भली बोल रहे महाबली बोल रहे, बट वाकई में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनके बगैर ओनम अधूरा है और इसीलिए ये सब जगह दिखते हैं। और मैं बस इतना ही कहूंगा, मुझे भी बहुत लोग ऑफर करते हैं गौरव तुम भी अगर ऐसे कपड़े पहन लो तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कमा लोगे। हम कहते नहीं, जाने तो नजर लग जाएगी मुझे मिर्ची शॉर्ट।

स्कूल जाने से पहले बच्चों को कुछ हेल्दी एंड क्रिएटिव सिखाइए। 89.6 बिरजीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। आई एम श्योर बच्चे बैक टू स्कूल के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है। हालांकि मिर्ची की एक्टिविटी के लिए तो रजिस्ट्रेशन फुल हो गए, लेकिन एक और एक्टिविटी जो हमारे वेस्ट वॉक में चल रही है अब उसकी बात करते हैं। #974 हम आपको बता दें कि हमारे वेस्ट वॉक में हमारे कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बकायदा एक बैक टू स्कूल इंटरैक्टिव और एजुकेशनल एक्टिविटीज इस वीकेंड प्लान किए, जहां पर बच्चों को प्लांटिंग सिखाई जाएगी, ड्राइंग सिखाई जाएगी, कलरिंग एंड रिसाइकलिंग के गुण एक साथ। हां जी, जैसे कि जो घर पे कचरा है वो घर पे जगह जगह फेंकते हुए उनको शायद अच्छा नहीं लगता है, अब उसे वो रिसाइकिल करना सीख जाएंगे। इसके अलावा ड्राइंग और कलरिंग से तो उनका मन वैसे ही लगता है, क्योंकि दीवारों पे वो अपने स्केच पेन से बहुत लिखते हैं, घरों में जाओ तो ये वाली आर्ट तो दिखती है, लेकिन अब इसका सही टैलेंट भी दिख जाएगा। और बैलेंस्ड मील का DIY भी यहां सिखाया जा रहा है। हां जी, सबसे अच्छी बात कि जो बच्चे वेजीज देखते ही भाग लेते हैं, कहते हैं मम्मा मुझे ये नहीं खाना, उन्हें अब वेजीज से रिलेटेड हेल्दी DIY डिशेस वहां सीखने को मिल जाएंगे। मतलब हेल्दी फूड एंड बैलेंस मील कैसे बनाई जाती है, बच्चों को यहां इसका इंपॉर्टेंस भी सिखाया जा रहा है। तो इस बार वीकेंड पर आपका प्लान यहां वेस्ट वॉक पे जरूर बनना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक साथ क्रिएटिविटी भी सीखेगा और अपने हेल्थ के लिए जरूरी चीजें खाने को कौन कौन सी ये भी सीखेगा। तो प्लान सॉर्टेड है भैया, वरना हमारे टाइम में बैक टू स्कूल के नाम पर मम्मी दो चवाण लगा दी, कहती जो दिया टिफिन में खा लेना, और हम शांति से खा के लौट आते थे। आजकल के बच्चों के पास चॉइसेस ज्यादा हैं और उससे ज्यादा केयरिंग पापा मम्मी। 89.6 मिर्ची 1, ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर बैक टू स्कूल। इट्स हॉट।

0: को पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ईरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। टीएनसी सप्लाई।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah live

अरे कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो बहुत आसानी से कर लूंगा। अगर मान लो सुहानी ने मुझे खड़ा किया और पूछा कि तुम अपनी किसी एक्स का नाम पूछो, तो मैं वाई का नाम लूंगा। क्यों सोचना एक्स के बारे में जब वो कह रही है, तुम वाई सोचो ना। मैं तो अपनी कोई पुरानी टीचर का नाम याद करने लगूंगा। फिलहाल यार कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे। दी मेडलिस सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे। ऑल सेट एंड ये आ रही है 25 सितंबर QNCC में, जिसकी टिकट्स आपको बुक करनी है। ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म पर टिकट तो आपको मिल रही है, लेकिन एस सिटी नूनू पर एक बड़ा फायदे का सौदा है, जहां पर आप किसी भी कैटेगरी की टिकट बुक करोगे 30 कतारी रियाल का कैशबैक मिलने वाला है। तो भाई एक तो अर्ली बर्ड ऑफर में टिकट प्राइजेस वैसे ही कम है, ऊपर से आपको ऑफर मिल रहा है। जितनी जल्दी हो सके 30 कतरी रियाल कैशबैक ऑफर का फायदा उठाओ और अपनी टिकट्स बुक करते जाओ दोस्तों यारों के साथ, ताकि साथ बैठकर सीखेंगे ये हुनर सुहानी का, ताकि हम भी आने वाले टाइम में लोगों के साथ ऐसे ही गेम खेलें और उनको लगे भाई ये तो जादूगर है। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त फॉलो करो आपके साथ मिर्ची इट्स हॉट।

0: क्यों।
1: कोई भी चीज बड़ी ना आपके विजन से होती है। फिलहाल घड़ी का टाइम बढ़ चुका है 7:03 से ज्यादा की तरफ।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: वैसे कतर ना अपने देश में होने वाले हर इवेंट के लिए एकदम जबरदस्त विजन रखता है, और इसीलिए पहले साल के बाद दूसरे साल वो और बड़ा, तीसरे साल और बड़ा, और फिर धमाकेदार हर साल के साथ वो बड़ा ही बनता जाता है। और ऐसी तैयारी हो रही है अब कतर बोट शो 2026 के लिए। यस, ओल्ड दोहा पोर्ट की रौनक और बढ़ेगी नवंबर 4 से नवंबर 7 तक, क्योंकि एक बार फिर से कतर 100% रेडीनेस के साथ तैयार है कतर बोट शो के लिए। कतर एयरवेज इसमें पार्टनरशिप कर रहा है। ऑफिशियल ट्रेवल पार्टनर के रूप में कतर एयरवेज ऑन बोर्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो ट्रेवल वाले करने वाले लोगों के लिए कोई झिझक नहीं है। उनके लिए आराम से है कि वो प्लान करें, कतर एयरवेज की फ्लाइट लें और कतर बोट शो का हिस्सा बन जाएं। इसके अलावा यहां पर होटल डील्स भी मिल रही है। सीमलेस प्लानिंग लगातार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आप वेबसाइट पर जाइए, आपको स्पेशल रेट्स दिखेंगे। और कहा यही जा रहा है, लग्जरी सुपर यॉट हो, वाटर फ्रंट डाइनिंग हो, लाइव एंटरटेनमेंट हो या मरीन लाइफस्टाइल का सबसे ग्रैंड स्टेज, कतर ये सब कुछ एक ही जगह लेकर आता है, कतर बोट शो में। तो बस बात इतनी है कि मौसम बदलेगा नवंबर में, और हम और आप अपने घर वाले दोस्तों यारों को उसी टाइम बुलाएंगे कि देखो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लग्जरी यॉट वॉट के एग्जीबिशंस लगते हैं, बोट शो लगता है, तुम उसका हिस्सा बन जाओ, अच्छा फील करोगे, क्योंकि हम तो ये हर साल देखते हैं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट, शो ऑफ करना चाहिए कभी कभी।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक तो सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी
3: इन्होंने चिल्लाई
2: तो फिर
3: बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

बहुत दिनों के बाद जब स्कूल जाओगे तो पहले दिन की पढ़ाई का गहरा असर तो होगा, लेकिन अब जब स्कूल में कुछ बच्चों को नए सब्जेक्ट मिलेंगे तो उनके करियर पर इसका गहरा असर होने वाला है। यस, मस्त मौला गौरव यहां आपको बताना चाहेगा कि कतर में न्यू सेशन शुरू होने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहां पर इस बार कुछ खास हो रहा है। कुछ खास यूं हो रहा है कि उनके लिए कुछ नए कोर्सेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने सेशन 2026-27 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। काश हमारे स्कूल डेज में भी ये हो पाता, क्योंकि मैं ना बहुत घबराता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग हैं जी, यहां पर एक सब्जेक्ट बनाकर साइंस के सारे प्रेशर को कम कर दिया गया है। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम के लिए गर्ल्स के लिए बकायदा हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड कुकिंग, और बॉयज के लिए कैंपिंग सी ट्रिप्स एंड सर्वाइवल स्किल्स का भी एक लाइफ स्किल प्रोग्राम सब्जेक्ट आ गया। फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए पैसा कैसे मैनेज करना है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, कैसे डायरेक्ट रियल लाइफ में हम इन सारी पॉलिसीज को लगाएं, इसके लिए भी बकायदा एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। टेक फ्यूचर स्किल्स, जहां पर AI, डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स सीधा सिस्को अकेडमी से इंजाज कतर के थ्रू कतर डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप कर इन सारे कोर्सेस को लॉन्च किया गया। मतलब हमारे टाइम पे जहां रट्टा मार दिन में हिस्ट्री सिविक्स बड़ी बेवफा रात को सफा हो जाती थी दिमाग से, यहां पर सब कुछ बड़ा ही प्रैक्टिकल हो रहा है। और AI के जरिए अब जब सीखना होगा दोस्त, तो ये जनरेशन वाकई में कुछ बड़ा करेगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन, जो कोर्सेज लाकर बच्चों की जिंदगी में बहुत सारा सुकून भी ला रही हैं। वरना हम तो दिन में रट रट के रात में सफा हो जाते थे, और एग्जाम में सफा चट 89.6 मिर्ची वन पर मम्मी से मिलते थे पटापट गालों में थप्पड़ मिर्ची इट्स हॉट।

0: अरे समझा करो भाई, समझा करो, कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है।
1: ऐसा एक्सक्यूज बहुत सारे लोग देते कि भाई मजबूरी में मुझे ये करना पड़ गया, ऐसा हो गया यार, मैं करना नहीं चाहता था। पर कोई नहीं, ये अच्छी बात है कि आप एक्सक्यूज तो देते हो। बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सफाई देनी पड़ेगी कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी क्यों चला रहे थे, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में 3 साल जेल जाने का खतरा है और 10,000 से 50,000 रियाल के बीच में फाइन का खतरा है। बात करो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की उस वार्निंग की जो उन्होंने हम सबको दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कतर में लोगों को ड्राइव करते हुए देख के बड़ा शौक चढ़ता है। उनके पास खुद का लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क टेकिंग में कभी कभी जब वो पौने हाथ चढ़ जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई अब तो जेल जाने की नौबत आ गई है। सो आई जस्ट से, अगर आप ऐसे किसी इंसान को बढ़ावा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये ट्रैफिक वायलेशन का सबसे बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है, जहां पर इंप्रिजनमेंट से लेकर हैवी फाइन है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ने कहा है ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस इज अ ट्रैफिक वायलेशन, और ये बाकी रोड यूजर्स के लिए भी लाइफ रिस्क लेकर आता है। इसलिए प्लीज हम सब ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कतर में ड्राइव नहीं करना, इस बात को समझे, वरना 1 महीने से 3 साल तक की जेल और 10,000 से लेकर 50,000 कतरी रियाल का फटका, यानी कि जितना लाइसेंस में आप 10 लाइसेंस बनवा सकते हैं उतना खाली आप फाइन दे देंगे। तो बेहतर है जाइए ड्राइविंग स्कूल से क्लासेस लीजिए, लाइसेंस लीजिए, तब गाड़ी चलाइए। कभी कभी ऐसी छोटी मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है, इस बात को समझिए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: कार्ड्स, डेकेड्स ऑफ एक्सीलेंस इन कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

क्या एनर्जी है, लेकिन बच्चों की एनर्जी के आगे तुम्हारी एनर्जी फीकी है। हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं बैक टू स्कूल सीजन के लिए, एंड सबने अपनी कमर कस ली है, जाएंगे अपने स्कूल्स एंड ढेर सारा मस्ती फन पढ़ाई लिखाई सब करेंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, बैक टू स्कूल जाने से पहले हमने आपके लिए एक स्पेशल पार्टी अरेंज कर दी है, एंड ये सब कुछ होने वाला है कल। यस, बलादना बैक टू स्कूल ड्रिवन बाय सुजुकी बाय तहसील मोटर्स, पावर्ड बाय आईपे स्माइल पार्टनर नसीम हेल्थ केयर, पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, एडवेंचर पार्टनर जंगल जोन एंड रेस्टो पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट पार्टनर Z5। ये सब एक साथ आए हैं ताकि बच्चों के लिए एक शानदार शाम बना पाएं, जहां वह बच्चे करें ढेर सारी मस्ती फन धमाल, एंड स्कूल जाने से पहले हम उनको असली रिचार्ज कर देंगे ना यार, इस उम्मीद में कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो कल वहां पहुंचकर जल्दी जल्दी अपने बच्चों को बहुत सारा फन मस्ती धमाल कराने को तैयार है। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से वीकेंड की वाइब सेट करने, और कहां कहां क्या क्या हो रहा है बैक टू स्कूल का आखिरी फ्यू आवर्स हम आपको बताएंगे। ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट। मैंने

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Sony Razdan, Alia or Shaheen, in dono mein se, who's most likely to listen to you even today?
3: Difficult one.
4: Split between my children.
5: So both of them in different ways.
4: Yeah.
5: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So kya bolu aapko?
2: Sony Razdan, aapne koi jawab nahi diya. आलिया या शाहीन किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिस्निंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: जब तक मैंने ये गाना नहीं सुना था या ये फिल्म नहीं देखी थी, आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि कोई एक पीस ऑफ बर्फी को एक चांद से कंपेयर कर सकता है। स्वानंद किरकिरे, हैट्स ऑफ टू यू।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। बर्फी के टुकड़े साथ चांद देखो आधा है, धीरे धीरे चखना जरा, हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है, इसे तकना जरा। डू यू नो व्हाट इज कनखी? कनखी इज आंखों का कोना, ऐसे तिरछी निगाहों से तको यार, अनबिलीवेबली मैजिकल। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये जो यू नो अरिजीत सिंह, स्वानंद किरकिरे, प्रीतम का मैजिकल कॉम्पोजिशन है फ्रॉम द फिल्म बर्फी, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस सॉन्ग एवर। चलो वेल, अब मैं आपको जो अभी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको एक टास्क देने वाली हूँ। जल्दी से आंखें बंद करो अपनी, अगर ड्राइव कर रहे हो तो मत करना प्लीज। हाँ, अगर आप घर पे बैठे हो या बाजू वाली सीट पे बैठे हो, अपनी आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी इमेजिन करो वो तीन लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। क्या इमेजिन? आपको बताए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 88% लोग उन तीन लोगों में अपने आप को नहीं याद करते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत पैशनेट तरीके से ना, हम खुद से तो प्यार करते ही नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं 88% लोगों में से आती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी मैंने भी अपने आप को याद नहीं किया था। एंड क्यों मैंने आपसे ये एक्टिविटी करवाई? क्योंकि अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बेकरां इस गाने का नाम है, फ्रॉम द फिल्म सात खून माफ। विशाल भारद्वाज ने खुद ने ये गाना गाया है, और जब आप इसकी इंटेंसिटी इमेजिन करोगे ना आंखें बंद करके, वो खुद भी कह रहे हैं लिरिक्स में, तो आपको लगेगा यार कैसे ये लोग ऐसा लिखते हैं, कैसे ये लोग ऐसा गा देते हैं। तो मैं बस अब आपके और इस गाने के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती। जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग, मुझे जरूर हाई लिखकर भेजना इस गाने के बाद। नाम है मेरा पारुल, मिर्ची कैफे सुन रहे हो आप। 7045983983 इज माय नंबर। इंस्टाग्राम पे paruls.world। सुनो इस अल्टीमेट गाने को, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Grábala. Burga, burga. La vida la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: नेहा भसीन की आवाज ने आपको मस्त मलंग डेफिनेटली किया होगा। आपको पता है धुन की ये जो वर्ड है, अगर आप इसका गूगल मीनिंग ढूंढोगे तो इसका मीनिंग होता है अ बो शेप्ड टूल जो कि कॉटन को क्लीन करने के काम आता है। ओके, लेकिन मेटाफोरिकली एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड अपनी खुद की ही धुन में जो लगा रहता है, जो बिल्कुल ऐसे फ्री स्पिरिटेड पैशनेट इंसान होता है, केयर फ्री होता है, वो कहलाता है कि धुन की लग गई उसको तो यार ही, कि अपनी धुन में लगा हुआ इंसान।
1: मिर्ची कैफे,
0: ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और धुन की वर्ड और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मुझे ये याद आता है कि जब हम छोटे होते थे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें हमारी धुन लग जाती थी, फिर हम वही करते रहते थे। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो किसी एक्टिविटी में, खेल कूद में, डांस में मगन रहता है, अपना एंजॉय करता रहता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल गैजेट वी हैव इन आवर हैंड्स, हमारी सारी जिंदगी का वक्त ही उसमें धुनकी में जा रहा है क्योंकि हम उसी पे लगे रहते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग में। तो गाइस यार, हैव सम रिज, कम ऑन, किसी तो ऐसी चीज की धुनकी लगाओ ना जो आपको भी खुशी दे। इंस्टेंट डोपामाइन्स को लात मारो, खुश रहना सीखो, असली खुशी। ओके, वेल अगला गाना आपके लिए आ रहा है अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में, एंड यू नो व्हाट, इसमें जो इंग्लिश वाले लिरिक्स हैं वो खुद करीना कपूर ने गाए हैं। चेक आउट दिस सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: पता है, ये जो गाना है ना उसकी मेरी एक बहुत ही कोर मेमोरी है जो मेरे दिल में बसी हुई है। तो ये जब गाना आया था तो बहुत ऐसा फैशन था कि सब लोग अपने अपने फोन्स पे ऐसे डायल टोन्स लगाते थे, मतलब अगर मैं किसी को फोन कर रही हूँ तो मुझे एक गाना सुनाई देगा। और बहुत वक्त तक मेरे पापा की उस टोन में ये गाना था। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल माय फादर वो गाना बजता था, मैं यहाँ हूँ यार, एंड आई फेल्ट सो गुड जब मैंने ये गाना बहुत दिन बाद सुना।
1: मिर्ची कैफे।
0: वेल, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आप इमेजिन करो, एक इंसान है, एक शख्स है, ठीक है, 1998 की फिल्म कयामत से कयामत तक के ट्रैक पापा कहते हैं से सुपर सक्सेस मिली। एक ऐसे मेल सिंगर हैं वो इकलौते जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं अक्रॉस डिस्टिंक्ट डेकेड्स, 80s, 90s, 2000s, वो जीते ही जा रहे हैं। 25,000 गाने गाए हैं उन्होंने अक्रॉस 36 लैंग्वेजेस। यार इस आदमी के लिए ना स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, द मैन कॉल्ड उदित नारायण। अरे क्या मतलब आवाज है इनकी भाई, गजब। खुद ही कहते हैं ना ये डैश क्या गाया है मैंने, अब वो डैश वाला वर्ड मैं बोल नहीं सकती इसलिए मैं बोल नहीं रही, बट ही इज अल्टीमेट यार। Hats off to the amazing singers we have जो हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं, जस्ट बिकॉज यू नो कुछ गाने सुनकर हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते हैं और एक स्माइल हमारे चेहरे पे आ जाती है। वेल, एक और ऐसा ही गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुनिधि चौहान और गायत्री अय्यर की आवाज में। ये है एक प्यार की कहानी, सुन के आओ इसको, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: Bollywood, Bollywood, bold art.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. Mr. Abhinay Deo.
3: Who was most likely to remove बाल की खाल? मतलब तह तक जवाब वो बताओ.
4: Wait.
3: Tell.
4: I have a list. भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही better है. But मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं. सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं. I'll tell you what.
3: जी.
4: I mean, he's passed away, but my father, my God, anything that I do, anything that any script has said, but ऐसा क्यों? अरे भाई साहब. Film Imagine. No. But why? And he was a filmmaker, an actor himself.
2: Abhinay Deo, the director, is talking about his father, Ramesh Deo, one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: रात भी कुछ कह देगी, चांद भी कुछ कह देगा, लेकिन ये लोग ना सिर्फ तभी आपसे बात करते हैं जो एंटायर नेचर होती है, जब आप उसके लिए रेडी होते हो, स्पेशली जब आप प्यार में होते हो, तो ऐसा लग रहा होता है कि सब आपसे ही बात कर रहे हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये वो मोड आ गया है जहां पर मुझे आपको अलविदा कहना पड़ेगा, बिकॉज यू नो द शो गेट्स ओवर, और उसके बाद मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगी। आप जरूर से नोट करके रखो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा paruls.world, मेरी दुनिया, ओके, माई वर्ल्ड paruls.world, और नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 7045983983, उसको भी नोट करके रखो। प्लीज मुझे बताओ आपको ये शो कैसा लगता है, आप मुझे गाना प्लीज बता सकते हो कि आपको कौन सा सुन है, जैसे अच्छी फीलिंग वाले गाने, गुड वाइब डेप्थ वाले गाने मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सजेस्ट करो ना कौन सा और गाना सुनना है आपको। और मैं आज आपको छोड़ के जाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बताकर। मैंने रिसेंटली पढ़ा अबाउट फॉकलैंड्स लॉ। आपने कभी फॉकलैंड्स लॉ के बारे में सुना है? जस्ट लिसन टू दिस, ओके, आराम से। इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन, इट इज नेसेसरी नॉट टू मेक अ डिसीजन। अगर कोई जल्दबाजी नहीं है किसी डिसीजन को लेने में, तो ये जरूरी है कि आप वो डिसीजन तब ना लें। ये गेटिंग माय पॉइंट? आप इसके बारे में और पढ़ना फॉकलैंड्स लॉ के बारे में, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस क्योंकि हमने सोच लिया और हमें डिसाइड करना है तो हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। नेवर डू दैट, गिव योरसेल्फ सम स्पेस एंड टाइम यार, थोड़ा तो सब्र अपने आप को दो, सोचना इस बारे में, ओके? सो इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ डिसीजन, डोंट टेक इट। बहुत इंटेंस बात है, आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे यू नो हम पैटर्न्स में फंस जाते हैं और फिर वही हरकतें करने लगते हैं जो हमें शायद नहीं करनी थी। वेल, अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, ये एक बहुत ही प्यारा मोहब्बत से भरा गाना है, सुनो इसको। और हाँ, मुझे जरूर लिखना इंस्टाग्राम और नंबर पे जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप वाला, एंड डू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनते रहो मिर्ची, बिकॉज इट्स हॉट। मैं हूँ आपके साथ पारुल, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ, only on पुरानी जीन्स। Hello and welcome। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप?
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
4: अरे यार
3: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी आप मुझे बताइए, आप मुझे
3: आपने
4: बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। 4 balls left, they need 12 runs to win।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: मैं

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल.

0: Radio Qatar, 6 decades of excellence in Qatar.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Karisma Kapoor.
4: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to death?
5: I have to answer this?
4: No, I'm asking just like that.
6: Karisma, ma'am, ek ka to jawab de do.
5: Probably Kareena.
4: Haan.
5: Out of both of us.
3: Bebo ko dekh ke lagta nahi hai wo darti hongi. Because she's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
7: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है।
10: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snowno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही।

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास देते, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे। देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ
4: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जीन्स पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बस वापस

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल.

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: बड़ी तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना, मैं हूं श्रेय।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: राखी सावंत, हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
4: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
3: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

पुराने जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।